सुप्रभात। एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि एक, तदनुसार 22 जून सन 2026। सुबह के 5:59 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के साथ आपका रेडियो दोस्त संजीव हाजिर है। आज हम इस कार्यक्रम में पशुओं के बढ़ते नवजात की देखभाल विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पशुओं के नवजात बच्चों मसलन बछड़े मेमने आदि का मृत्यु दर जन्म से 3 माह के बीच अधिक देखा जाता है, जिसका मुख्य कारण उचित देखभाल की कमी है। इसलिए हमें इस समय इसका उचित देखभाल रखनी चाहिए। जन्म के साथ तुरंत बाद इनके नाक मुंह की सफाई के साथ आधे घंटे के भीतर पहला गाढ़ा दूध जरूर पिलाना चाहिए और नाभि की उचित देखभाल सबसे महत्वपूर्ण तरीके से करनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, गर्भनाल को पेट से लगभग 2 इंच छोड़कर साफ और कीटाणु रहित कैंची से काटें। इसे साफ धागों से बांधें और संक्रमण से बचाने के लिए टिंचर या आयोडीन जरूर लगा दें। नवजात पशुओं को शुरुआत में अत्यधिक ठंड और बारिश से भी बचानी चाहिए। इनके बाड़े में सूखा पुआल या भूसा बिछा दें ताकि उन्हें नमी से बचाया जा सके। नवजात पशुओं की 15 से 20 दिन की आयु होने पर पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की आप दवा जरूर दें और लगभग 3 से 4 महीने की आयु होने पर HS और BQ जैसे घातक रोगों के टीके भी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर जरूर लगवा लें। नवजात को पशु आहार के रूप में 15 से 20 दिन के बाद अच्छी गुणवत्ता वाली सूखी घास और कफ स्टार्टर थोड़ा थोड़ा देना शुरू करनी चाहिए। मेमनों और बकरियों के बच्चों को 4 महीने के उम्र तक मां का दूध पीने दें, लेकिन 3 सप्ताह की उम्र से ही उन्हें हरे पौधों में रुचि दिखाना आप शुरू कर दें। याद रखें, ज्यादातर पशुओं के बच्चे उचित भोजन की वजह से ही मरते हैं, इसलिए इनके आहार पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से, और अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संबंधों की आधारशिला है एक दूसरे को सुनना और फिर समझना। सम्यक श्रवण यानी कि सही सुनना, इससे जीवन में बहुत सारी उलझने सुलझेंगी, आप गलत फहमियों से बचेंगे। सुनना एक कला है, उसके लिए दिल शरीर भाव पूरी तरह मौजूद होना चाहिए, हृदय खुला और शांत होना चाहिए। एक शब्द है दत्त चित्त, मतलब है सुनते समय आपने अपना चित्त वक्ता को दिया। यदि आप अपना चित्त दे सकें तो वो श्रेष्ठ किस्म का सुनना होगा। सुनने समय कोई मूल्यांकन ना करें। इसके बाद आप जब लोगों की बातें सुनेंगे तो उसमें स्पष्टता होगी, जो कहा गया उसे ही सुनेंगे और अपनी तरफ से कुछ मिलाएंगे नहीं। ये अभ्यास ही आपको सुनने की कला सिखाएंगे। इसका उपयोग पूरे जीवन में करें, आपका जीवन मधुर होगा।

ये था चिंतन FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

सुबह की धुंध में चिड़ियों की चहचहाहट के साथ धीमी धीमी बहती हवा केवल ना अर्धरात्रि में भोर का एहसास दिलाती है, बल्कि उस धुंध के बीच में दूर कहीं बजती मंदिर की घंटियां और शंखनाद सुबह के सात्विक और दैवीय वातावरण के आगमन का प्रतीक बन जाती है। तो आइए इस सुंदर सुबह की बेला का स्वागत करें भक्ति गीतों से, और पहले सुने ये देशभक्ति रचना।

संवेद स्वरों में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भजन। कलाकार हैं नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल, हरिहरण, सोनू निगम, लखबीर सिंह लखा, देबाशीष, विनोद राठौर और बाबला मेहता।

आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे नरेंद्र चंचल, अनुराधा पौडवाल, हरिहरण, सोनू निगम, लखबीर सिंह लखा, देवाशीष, विनोद राठौर और बाबला मेहता। इसी के साथ भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम वंदना यही संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गई। भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग। सुबह के 7 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन

0: अंकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालेम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आपको बता दें श्रोताओं, आज सुबह 7:10 पर कार्यक्रम जरा सुनिए में आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए राष्ट्रीय आयोजन और शहर के सामाजिक परिवेश और विभिन्न स्कूलों में हुए आयोजनों पर चर्चा। सात बजकर 7:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे भोजपुरी लोक गीतों का, कलाकार होंगी शारदा सिन्हा। 7:35 पर बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजलि में सुनेंगे आधुनिक गान, कलाकार होंगी आशा भोसले।

7:50 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुनेंगे कृष्ण कुमार से राजेश कुमार की बातचीत योग करने की सही विधि इस विषय पर। सुबह 8:45 और 10:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 9:05 पर सुरंजना कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के गाने।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे पंडित वीजी जोग के वायलिन वादन का, राग होगा अहीर भैरव। दिन के 11:05 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दोपहर 12:05 पर होगा कार्यक्रम भावगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लेंगे पंडित वीजी जोग के वायलिन वादन का, राग होगा शुद्ध सारण। दिन के 1:20 और दोपहर 2:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तीन बजे सुनना ना भूलें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। 3:45 पर आदिवासी लोकगीतों के कार्यक्रम में आनंद लेंगे संताली लोकगीतों का, कलाकार होंगे स्टीफन सोरेन और साथी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरा सुनिए।
4: जरा सुनिए,
5: जरा सुनिए,
4: जरा सुनिए।
5: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी
4: जरा सुनिए।
6: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम जरा सुनिए के आज के अंक के साथ हूँ मैं अनिमेश कुमार बक्सी। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। हमारे शहर जमशेदपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए, क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या ग्रामीण परिवेश, सभी जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं क्या क्या गतिविधियां रहीं और क्या क्या आयोजन हुए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा,
7: जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए, ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है।
6: सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा,
8: यह पर्व अब एक वैश्विक पर्व पर सिर्फ योग ही नहीं बल्कि योग के माध्यम से पूरी मानवता का एक

0: अस्तम बन चुका। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, योग जरूर करें। योग से तन मन मस्तिष्क विचार सब स्वस्थ होता है और अपने भी सुखी संपन्न रहे, समाज को भी सुखी संपन्न रहे और देश भी सुखी संपन्न रहे।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ तरुण जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। तरुण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जोहार।
1: क्या कुछ कहेंगे, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, क्या कुछ आपने आयोजन किया?
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पूरे विश्व में भारत का एक संदेश है निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और भारत में स्कूल कॉलेज गांव सब जगह इतने उत्साह के साथ योग मनाया जा रहा है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि योग बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता आती है। लेकिन योग दिवस के अलावे भी हम लोगों को नियमित रूप से योग करना चाहिए।
1: और बहुत सारी बच्चियों के लिए आप काम करते हैं, उन बच्चियों के लिए योग के संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
2: जैसे महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है, पीरियड्स में काफी सारे दर्द होता है, तो उससे निजात के लिए भी काफी सारे आसन हैं। अगर उसको महिलाएं अगर नियमित तौर पर उसको करें तो मतलब दर्द में काफी निजात आ सकती है। और पीसीओडी पीसीओएस जैसे भी समस्याएं लाइफ स्टाइल के कारण अभी काफी परेशान रहती है काफी महिलाएं, मोटापा भी एक अभी वो आ गया है, लगभग सभी लोग इससे ग्रसित है। तो योग और उससे जुड़े हुए जो भी एक्सरसाइजेस है, क्योंकि हम लोग अभी के समय में बहुत सक्रिय नहीं रह पाते खेल में कसरत में, तो और आध्यात्मिक रूप से भी आप काफी उन्नत हो सकते हैं अगर योग से अपना जुड़ाव रखते हैं तो। नियमित तौर पर जुड़ाव रखना काफी मुश्किल है सभी हम सभी लोगों के लिए, लेकिन इसे आदत में लाया जाए ये बहुत ही जरूरी है हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए और बेहतर स्वस्थ भारत के लिए।
3: नमस्कार, मेरा नाम शताब्दी दत्ता है। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, योग जो है मन को पवित्र करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है।
1: बिल्कुल।
3: योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा योग करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है जिसे महर्षि पतंजलि ने विकसित किया था और हर साल की भांति इस साल भी पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष योग का थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। धन्यवाद।
1: आप क्या योग करती हैं?
3: जी हाँ।
1: और लोगों को क्या कहना चाहेंगी विश्व योग दिवस पर?
3: लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, परंतु सिर्फ 21 जून को ही योग करना है ये हमारे मन में नहीं रखना है, हमें हर दिन योग करना है और तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है।
1: शताब्दी जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वृद्धावस्था के लिए जो योग इस बार का निर्धारित किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि भारत में कितने ऐसे लोग होंगे जो योग को अपनाते होंगे?
3: वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं, पर जैसे स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग का जो थीम है कि हमारे जो युवा लोग हैं सिर्फ वो योग नहीं करें, पूरे देश में जितने भी लोग हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करना चाहिए।
1: अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जो श्रीनाथ पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके स्कूल में योग दिवस का आयोजन कैसे हुआ और क्या कुछ इन्होंने योग करने वालों को कहा। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: धन्यवाद सर।

0: क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
1: हमारे यहाँ भी सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे यहाँ भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, उनको हमारे जो योगा टीचर हैं उनके द्वारा अलग अलग योग अवस्थाओं का ये किया गया है और उनको उसके बारे में बताया गया है, उसका जरूरत, उसका क्या उपयोग है, जीवन में कैसे ढालना है। तो इसे बच्चे किए हैं, एक पाली में बच्चे किए, दूसरे पाली में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं लोग वो लोग को करवाया गया था।
0: अच्छा।
1: और बच्चे हाल फिलहाल में कहीं भी योग में, जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय योग ये में, जहाँ भी या राष्ट्रीय योग ये में जहाँ भी पार्टिसिपेट किए थे, उनका जो सर्टिफिकेट और ये जो प्राइजेस मिला था उनको आज स्कूल में सभी बच्चों के सामने सम्मानित भी किया गया है। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके बहुत अच्छे से हुआ, और हम लोग चाहते हैं कि सारा स्कूल ये करे। वैसे हर क्लास के लिए, क्लास वन से लेके एट तक का हर क्लास का हम लोगों ने योग का एक अलग से डेली सुबह में एक घंटा करीब 45 मिनट योग पे हर क्लास को मौका मिलता है, उसको करवाया जाता है योग।
0: श्रोताओं, अभी हमारे साथ बाल ज्ञान पीठ हाई स्कूल की प्राचार्या पी पुष्पलता जी हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सो मच।
0: क्या कुछ कहना चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर?
2: जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल मेंटल पे बहुत ज्यादा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इस अवसर पर हमेशा जो पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है, हमारे स्कूल में भी सर बहुत शानदार हम लोगों ने योग दिवस किया जिसमें अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, प्राणायाम और ओम चैंटिंग के साथ सारे बच्चों ने, 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा हम लोग उन्हों को ये बताए कि योग का हमारे लाइफ में कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो युवा आज हम लोग देख रहे हैं और इनके लिए शांति अनुशासन जो है ये बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल में हो या घर पर हो। तो और योग के लिए, योग का सिखाने का सबसे मेन मकसद ये था कि ये सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स बच्चों को देता है, और सबसे पहली बात सकारात्मक सोच के साथ साथ मानसिक शांति भी बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पढ़ाई में उन लोगों को बहुत ध्यान केंद्रित करती है। और इसके बाद हम लोगों ने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया था सर, और इंटर हाउस कंपटीशन योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी करवाया, इससे पूरा उनका मन, आत्मा, शरीर सबको मतलब एक साथ जोड़ने का जो फिजिकल जो आपका बोलते हैं एक्सरसाइजेस, वो हम लोगों ने स्कूल में करवाया है।
0: अभी हमारे साथ डॉक्टर जीके पांडे जी हैं जो वैली व्यू स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पूरे भारत में और पूरे विश्व में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर?
3: जी नमस्कार। जो योग दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन हो गया है, और खासकर जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको मिशन के रूप में लिया है, घर घर में योग शामिल हो गया है। मैंने खुद योग किया है और बच्चों से भी कराया है, हमारे स्कूल में भी योग का पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है, सारे टीचर्स और सारे बच्चों ने योग किया है।
0: और आपसे जानना चाहेंगे कि सभी का ये मानना है कि योग जो है वो परमात्मा को जोड़ता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर?
3: जी हाँ, एकदम सही। मैथ टीचर के नाते मैं ये भी बता दूं आपको कि योग, योग का मतलब सम, यानी योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो इसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सबको जोड़ता है योग, इसमें कोई भेदभाव भी नहीं रहती है। योग के समय में मन एकदम शांत हो जाता है, और वास्तव में योग जो है वो पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम ही योग है।
0: क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे भारतवर्ष के लोगों को और विश्व के लोगों को?
3: हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, आजकल खासकर कोरोना के बाद हमने ग्राफ देखा है तो ज्यादातर अभी मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों पे चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, स्कूल स्तर से ले

0: सभी बच्चे और पेरेंट्स में दूरियां बढ़ते जा रही है, खासकर इस सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे एक दूसरे से, अभिभावकों से भी अलग होते जा रहे हैं, समाज से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से, सभी बुजुर्ग से, सभी समाज सेवी से, सारे शिक्षकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप बच्चों में अपने स्तर से योग को विकास करें, अपने योग करें जिससे बच्चों को देख करके उनमें भी भावनाएं बढ़े। योग सारे सॉल्यूशन का, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है योग। तो यदि योग के बारे में यदि ज्यादा सोचा जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती है और हमारा देश क्या विश्व काफी विकसित हो सकता है। योग से मानसिक शांति मिलती है, योग से सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, ये थी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अपने शहर जमशेदपुर के गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम जरा सुनिए। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विवेक आदित्य, और अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति से अनिमेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: जरा सुनिए,
3: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए।
3: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
2: जरा सुनिए।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जरा सुनिए। FM 102.4 MHz पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के संग, और अब लोक गीतों के कार्यक्रम में आनंद लें। भोजपुरी लोक गीतों का कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थी शारदा सिन्हा। इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर। और अब बांग्ला गीतों के कार्यक्रम सुरांजली में सुने आधुनिक गान। कलाकार हैं आशा भोसले।

आप सुन रहे थे आधुनिक गान, कलाकार थी आशा भोसले। इसी के साथ बांग्ला गीतों का ये कार्यक्रम सुरांजलि यही संपन्न होता है। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सुने कृष्ण कुमार से राजेश कुमार की बातचीत, योग करने की सही विधि इस विषय पर।

श्रोताओं, योग आज हम सबके जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन जाने अनजाने अगर सही तरीके से योग नहीं करें तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। योग करने की क्या सही विधि है, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंतर्गत हम बातें करेंगे इसी विषय पर।

0: बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक श्री कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि योग करने की क्या सही विधि है।
1: योग करने की सबसे पहले तो सही समय और तरीका इस तरह से है कि जब हमारा पेट खाली हो जी, मन शांत हो और वातावरण भी खुले हुए हो, साथ ही जब भी हम योग करें तो नीचे में ग्राउंड धरती पे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि पार्कों में कि वे सीधे घास पर बैठ गए या शिलापट पे बैठ गए, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि योग करने के दरम्यान हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यदि वह सीधे जमीन पर बैठ जाएंगे तो वह हमारा शरीर से ऊर्जा ह्रास होता जाएगा। जिस तरह से टंकी में पानी यदि हम ऊपर से डालते हैं और नीचे से नल खुला रहता है तो टंकी कभी भर नहीं सकता, ठीक उसी तरह से इस बात का जरूर श्रोताओं ध्यान रखें कि जब भी आप बैठें तो बहुत बहुत बड़ी प्रक्रिया है आपके जीवन के लिए, और योग को पूरी तन्मयता, एकाग्रता और उत्साह के साथ करें, क्योंकि यह ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, न कि दूसरे के लिए। सही विधि है कि पेट खाली होने चाहिए, ज्यादा बीमारी ना हो, बुखार में भी ना करें, मानसिक रूप से किसी तरह का बहुत अवसाद हो तो ऐसी स्थिति में भी ना करें। जैसे कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन या किसी तरह का बहुत गुस्सा तनाव में, तो ऐसी स्थिति में योग ना करें और मन को पूरी तरह शांत होने दें। क्रोनिक बीमारियां कुछ ऐसी है किन्हीं को यदि, तो उसमें जरूर योग प्रशिक्षक या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, ताकि आपको नुकसान से बचाया जा सके।
0: भागती दौड़ती इस जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी है, सुबह के समय के अलावा किसी और समय में योग को अपनाया जा सकता है या योग किया जा सकता है?
1: भाग दौड़ की जिंदगी में पहले तो हमारी प्राथमिकता तय होनी चाहिए कि हम योग को कितना या शारीरिक व्यायाम को कितना महत्व देते हैं जी। जिस चीज की प्राथमिकता होती है उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं, प्रायोरिटी। तो सुबह में यदि समय बिल्कुल किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो जरूर शाम को कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का भोजन करने के कम से कम 4 घंटा पेट खाली हो, तभी उसका सही लाभ मिलेगा।
0: किन लोगों को योग नहीं करना चाहिए?
1: जब किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो मुख्य रूप से आप योग प्रशिक्षक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, और कोई अंग विशेष यदि पीड़ित है तो उसके लिए भी सलाह अवश्य लें, ताकि आपको सही लाभ मिल सके। यह तो किसी योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में ही प्रारंभ में जरूर सीख लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं, कुछ आसन ऐसे होते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए जी। भावावेश में या उत्साहपूर्वक जानकारी के अभाव में कोई नुकसान न हो तो आप जरूर इस संपर्क करके ही योगाभ्यास को करें।
0: लोग टीवी पे देख के या फिर किसी अन्य माध्यम से पढ़ के योग करना शुरू कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए?
1: मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि सुने जरूर, लेकिन उसकी बारीकियों को जरूर समझने का प्रयास करें। पहले तो कुछ दिनों उसका अवलोकन करें, मतलब देखें, समझें, सुने, तब प्रारंभ करें, और यदि संभव हो तो जरूर किसी न किसी योग प्रशिक्षक से संपर्क करके उनके निर्देशन में शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और लाभदायक रहेगा।
0: कृष्ण कुमार जी, आपने काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां दी, आपने जो विधियां बताई उस पे लोग अमल करेंगे और किसी प्रशिक्षक के अंतर्गत रहकर ही योग करें तो ज्यादा अच्छा होता है, जैसा कि आपने बताया। उम्मीद है हमारे श्रोता आपके द्वारा बताए गए बातों पर ध्यान देंगे और योग भी करेंगे और सही तरीके से करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार से राजेश कुमार की बातचीत योग करने की सही विधि इस विषय पर। FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव।

0: के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
4: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की

0: मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं प्रिग्नैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूरसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
4: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
5: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
6: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
7: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC NET जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रोटरडेम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण। भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेस्ट्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मॉनसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
2: सरकार पूरी कटिबद्ध थी, बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्जाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी, तो NTA ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिलकर इस एग्जाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम भारत, टीम NTA के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए।
0: राजधानी रांची समेत राज्य भर के 67 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था किए गए थे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए NTA और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू थी। राजधानी रांची में परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाने का प्रयास किया गया तो उसका लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। बीआईटी मेश्रा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध शैक्षणिक सहयोग संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाएं, छात्र एवं फैकल्टी विनिमय, इंटर्नशिप और फैकल्टी विकास कार्यक्रम संचालित करेंगे। बीआईटी मेश्रा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने इसे अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार आधारित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि यह साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, जल संसाधन, जलवायु और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई दिशा देगी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवण प्रभाकर ने बताया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज धनबाद में जनाक्रोश मार्च निकाला जाएगा।
5: झारखंड की जनता का दमन हो रहा है, विस्थापितों का दमन हो रहा है, रैयतों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है। कोयला माफिया है, उनको जेल में डालने की बजाय आंदोलनकारियों को जेल में डालने का काम किया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर जनाक्रोश मार्च परेड गोल ग्राउंड से, धनबाद के गोल ग्राउंड से आरंभ होगा और कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जाकर यह समाप्त होगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 4 मिलीमीटर और खूंटी में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ सहित अन्य जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय हॉकी के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जब पुरुष और महिला दोनों टीमों ने विदेशी धरती पर शानदार जीत दर्ज की। ऑकलैंड में महिला टीम ने FIH नेशंस कप 2025-26 फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता और प्रो लीग 2026-27 में जगह पक्की की। वहीं नीदरलैंड में पुरुष टीम ने प्रो लीग मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड को 3-2 से हराकर उलटफेर किया। भारत के लिए जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल दागे। झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की प्रथम वार्षिक आम सभा IPS डॉक्टर सरोजनी लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के लगभग 55 पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षण

हिंदुस्तान ने योगा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मांडर के डोभा में दो बच्चों की डूबने से मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की भूमिका महत्वपूर्ण, भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा आगे। रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोले पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, परिसीमन का आदिवासी समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। बीआईटी मेसरा और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त शोध शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया एमओयू। राज्य भर में धीरे धीरे सक्रिय हो रहा मानसून, रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब। पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में नीदरलैंड को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:47 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म का नाम था दहक, आवाजें थी हरिहरन और साधना सरगम की, गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था इसे आनंद मिलिंद ने।

चमेली फिल्म का ये गीत आपने सुना सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत बनाई थी संदेश शांडिल्य ने। इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति के नवंबर 2025 में अफ्रीकी देश बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 8 चीतों के प्रतीकात्मक हस्तांतरण किया गया था। इन चीतों को इस वर्ष फरवरी में परियोजना के नवीनतम चरण के तहत कुनो लाया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत्सेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे और इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत की ओर से युवराज सिंह, अभिषेक

0: राजेंद्र सिंह ने गोल किए और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है FM 102.4 MHz पर।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
1: और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना।

आज के दिन कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनते हैं एक ही संगीतकार का के गाने, और हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार एम एम कीरावाणी पर। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

एमएम कीरावाणी का जन्म 4 जुलाई 1961 में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के कोवूर में हुआ था। दरअसल इनका पूरा नाम कोडूरी मरागाथमनी कीरावणी है, लेकिन संगीत जगत में ये दो और नामों से भी जाने जाते हैं, एक एमएम कीरावाणी और दूसरा एमएम क्रीम। ये एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्म संगीत के निर्देशक, फिल्म स्कोरर और रचनाकार हैं। उनके पिता कोडूरी शिव शक्ति दत्ता भी एक उम्दा गीतकार और पटकथा लेखक थे। विरासत से मिली प्रतिभा के धनी एमएम कीरावाणी के गाने जितने दक्षिण सिनेमा में मशहूर हैं, उतना ही हिंदी फिल्मों में भी पसंद किए जाते हैं।

एमएम क्रीम ने 1987 में तेलुगु संगीतकार के चक्रवर्ती और मलयालम संगीतकार सी राजामणि के सहायक निर्देशक के रूप में अपने संगीत करियर की शुरुआत की। 1990 में तमिल फिल्म कल्कि से इन्होंने स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन में कदम रखा। आखिरकार 1991 में फिल्म शनम शनम से उन्हें संगीतकार के रूप में विशेष पहचान मिली। इसके बाद उन्हें संगीत फिल्म हिंदी फिल्म से भी ऑफर्स मिलने लगे और उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म क्रिमिनल से अपनी बड़ी और दमदार शुरुआत की।

हम आपको बता दें श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना केंद्रित है संगीतकार M.M. कीरावाणी पर। फिल्म क्रिमिनल की सफलता के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों को एक से बढ़कर एक कई एक धुनों से सवारा, जिनमें फिल्म पहेली, सुर, रोग, जख्म, आवारापन, साया जैसी और भी कई एक फिल्में हैं। अपने संगीत के दम पर इन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। वर्ष 2023 में उनके गीत नाटू नाटू ने ऑस्कर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले भी इसी गीत के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अपने करियर में उन्होंने एक अकादमी पुरस्कार, LAFCA पुरस्कार, 11 नंदी पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ ही 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है।

0: और अब देखते ही देखते श्रोताओं, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी आपकी दोस्त नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। और अब शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद लें पंडित वीजी जोग के वायलिन वादन का। राग है अहीर भैरव।

0: आप सुन रहे थे पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन, राग था अहीर भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह की 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित

0: तीन नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ. जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रोटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said, a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
0: Mr. Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre at Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations and anti-submarine warfare. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. In West Bengal, anticipation is high as the BJP government prepares to present its first full-fledged budget today in the Assembly. For Chief Minister Suvendu Adhikari, this marks the first major test of promises made during the election campaign. With the centre pledging massive financial support and the advantage of a double-engine government, expectations among citizens are soaring. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will undertake an official visit to Mongolia and South Korea beginning today. External Affairs Ministry said that Dr. S. Jaishankar will visit Mongolia and meet Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart B. Batsitseg. The External Affairs Minister will visit South Korea on 24th and 25th of this month. During the visit, the Minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Testing Agency will commence the UGC NET June 2026 examination from today. The national level eligibility test will be conducted in computer-based test mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET exam is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship, Assistant Professor positions and admission to PhD courses. US Vice President J.D. Vance has said that talks with Iran were making progress as senior delegations met in Switzerland to address Tehran's nuclear program and regional security issues. Speaking to reporters before the meeting, Vance said negotiations have already yielded encouraging results. The talks are focused primarily on Iran's nuclear program, though regional security issues, including efforts to maintain the ceasefire between Israel and Lebanon, are also expected to feature prominently. In men's hockey, India defeated Netherlands 3-2 in their last match of AFIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugrat Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de Espirela has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing senator Ivan Cepeda by a very small margin. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाश दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला की जीत। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्त चित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ संपन्न। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से और ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत सिंह के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार अबेलार्डो डे ला एस्प्रियला ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है। उन्होंने वामपंथी सीनेटर इवान सेपादा को मामूली अंतर से हरा दिया। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार डेला एस्प्रियला को लगभग 49.7% वोट मिले जबकि सेपेदा को करीब 48.7% मत प्राप्त हुए। वकील और व्यवसायी अबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई का वादा किया था। उन्होंने अमरीका के साथ घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की भी बात कही थी। उनकी जीत को अर्जेंटीना और चिली के कई दक्षिणपंथी नेताओं ने स्वागत योग्य बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव परिणाम का स्वागत किया है। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में अपना भारी बहुमत बरकरार रखा है। चुनाव परिणाम कल घोषित किए गए। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। नई संसद के अक्टूबर में सत्र शुरू होने और अभी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। असहमति पर दमनकारी कार्रवाई के कारण चुनावों में बाधा उत्पन्न हुई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को

0: कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज करते हुए विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा और इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप जी में पहले स्थान पर आ गया। इससे पहले केप वर्दे ने फ्लोरिडा में ग्रुप एच के मैच में उरुग्वे को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। ईरान और बेल्जियम के बीच भी कल रात कैलिफोर्निया में ग्रुप जी का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। 66वें मिनट में नाथन नगोए को मेहदी तारेमी पर फाउल करने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद बेल्जियम के 10 खिलाड़ी रह गए, लेकिन ईरान इसका फायदा नहीं उठा सका। इससे पहले स्पेन ने अटलांटा में ग्रुप एच के मैच में सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार जीत के साथ अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पेन के अब 2 मैचों में 4 अंक हैं, जबकि सऊदी अरब 1 अंक पर बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किया। भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान हार्दिक सिंह को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी हुई है। दौरे पर शुभमन गिल कप्तान और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। बोर्ड ने रोहित शर्मा, KL राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर के गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीतने के साथ ही संपन्न हो गया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। सुबह के 10:20 हुए हैं। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के लिए करें बस जरा सा इंतजार।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

फाइटर फिल्म का ये गीत आपने सुना, विशाल की, विशाल और शिल्पा राव की आवाज में। संगीत निर्देशन किया था विशाल शेखर ने और गीत लिखा था कुमार ने।

चंदू चैंपियन, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना श्री रामा चंद्र की आवाज में। गीत लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने।

तू झूठी मैं मक्कार, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने और गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने।

नीरज श्रीधर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। गीत लिखा था प्रीतम, क्षमा करें श्रोताओं, गीत लिखा था समीर ने और संगीत निर्देशन किया था प्रीतम ने।

देवडी इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, तोशी रैना की आवाज में। गीत लिखा था शैली ने और संगीत निर्देशन किया था अमित त्रिवेदी ने।

धुरंधर द रिवेंजेस फिल्म का ये गीत आपने सुना खान साहब और शासत सचदेव की आवाजों में। गीत लिखा था नुसरत फतेह अली खान ने और संगीत निर्देशन किया था शाश्वत सचदेव ने। और इसी के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ

प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657296044 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आपने ट्यून किया है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें श्रोताओं, सुनना ना भूलें 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिस्तेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं हम। दिन के 11:05 हुए हैं अभी। अब हम करेंगे अपने दिवाकालीन कार्यक्रमों की शुरुआत और इसी कड़ी में आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Hood. नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आज कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, हर रोज की तरह हमने आज भी नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम को सजाया है नए पुराने कुछ फिल्मी गीतों, रोचक मनोरंजक जानकारियों भरी कुछ दिलचस्प बातों के साथ। तो चलिए शुरू करें अब अपना कार्यक्रम।

दोस्तों, इस साल दुनिया भर के अधिकांश देश भीषण गर्मी से परेशान हैं। जिन देशों और राज्यों को ठंडी जगह माना जाता था, वहां पर भी तापमान बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक रूप से जंगलों की कटाई है। आज यानी 22 जून के दिन विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। आज धरती पर स्वच्छ पानी, हवा और ऑक्सीजन अगर इंसानों तक पहुंच रहा है तो ये घने जंगलों के कारण ही संभव है। लेकिन लगातार इनकी कटाई के कारण आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी पेड़ पौधों का संरक्षण करके इसके असर को कम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत कब हुई थी और इसे क्यों मनाया जाता है? चलिए बताते हैं आपको। धरती पर जीवन के लिए इंसानों और सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद वर्षावनों के कारण ही आज इंसानों और जीवों तक ऑक्सीजन जो है वो पहुँच रहा है। हर साल दुनिया भर के लोग विश्व वर्षावन दिवस मनाते हैं, जिसके ज़रिए वो वर्षावनों के महत्व और उनकी संरक्षण की ज़रूरत के बारे में लोगों में जागरूकता फैला सकें। इस दिन की शुरुआत रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक संस्था द्वारा की गई थी। इसके बाद पहली बार वर्ष 2017 में इसे दुनिया भर के अधिकांश देशों में मान्यता मिली थी। पहला विश्व वर्षावन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था, जब ऑस्टिन टेक्सास में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप ने वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य वर्षावनों के महत्व और इसके अमूल्य योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। हालांकि वर्ष 2021 में सभी क्षेत्र के लोगों और संगठनों को एक साथ लाने के उद्देश्य से विश्व वर्षावन दिवस शिखर सम्मेलन शुरू किया गया। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ये ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना समेत दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है। ये लगभग 2.1 मिलियन वर्ग मील पर फैला हुआ है। अमेज़न वर्षावन में अनगिनत अलग अलग प्रजाति के पशु रहते हैं। इतना ही नहीं, इस जंगल को 16,000 प्रजातियों से संबंधित लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर कहा जाता है। इसके बाद कांगो वर्षावन को सबसे बड़ा वर्षावन कहा जाता है। ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। इसके क्षेत्र में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और अंगोला और दक्षिण सूडान के कुछ हिस्से शामिल हैं। 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अनुमानित आकार में ये फैला हुआ है और इस जंगल में लगभग 10,000 पौधों की प्रजातियां और 1,000 पक्षी प्रजातियां रहते हैं। कांगो वर्षावन में गोरिल्ला, बोनोबोस और वन हाथियों जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

श्रोताओं, वर्षावन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखते हैं। ये पृथ्वी के जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि वर्षा वनों में कई प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में होता है। ये पौधे कई बीमारियों के इलाज में सहायक भी होते हैं।

इस दिन पर दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी संगठन और सरकारें मिलकर वर्षा वनों की रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये दिन हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए हरित पर्यावरण सुरक्षित करने की प्रेरणा देता है।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में विजय फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। शिव हरी के संगीत निर्देशन में गीत लिखा था निदा फाजली ने।

दोस्तों, हमारा जलवायु संतुलन और परिवर्तन सीधे तौर पर पेड़ पौधों और हमारे वनों पर निर्भर करता है। हम सब ये भलीभांति जानते हैं कि हमारे जलवायु का पैटर्न जो है वो अब बदल चुका है और इसके लिए ये कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। अलनीनो की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। श्रोताओं, भारतीय मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक मॉनसून के दौरान मध्यम से मजबूत अलनीनो की स्थिति का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में बारिश की कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत में जहां सारी खेती किसानी मॉनसून और जलवायु पर निर्भर है, अलनीनो का सामना कैसे करेगा और उस पर कैसा असर पड़ेगा, इसका ये एक चिंता का विषय है। जब अलनीनो जैसी प्राकृतिक घटना और इंसानों द्वारा बढ़ाया गया वैश्विक तापमान एक साथ मिलते हैं तो मौसम के ऐसे रिकॉर्ड्स टूटते हुए दिखते हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए।

दोस्तों, अलनीनो एक ऐसी जलवायु घटना है जिसका संबंध कमजोर मॉनसून और वर्षा की अनिश्चितताओं से होता है। वैश्विक मौसम और जलवायु तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जब तापमान सामान्य से अधिक यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो अलनीनो की स्थिति बन जाती है। अमेरिका के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र नोआ के मुताबिक अभी यहाँ का तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, मतलब अलनीनो आ चुका है। अलनीनो जब आ जाता है तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपरी वायुमंडल की हवाओं का रुख बदल जाता है, बारिश का पैटर्न भी। यहाँ का वायुमंडल दुनिया के अधिकांश हिस्सों से जुड़ा हुआ है और सब पर असर डालता है। कई इलाकों में बारिश कम होती है, तापमान बढ़ जाता है। कई इलाकों में अधिक बारिश होती है, जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बारिश की कमी हो जाती है। अमेरिका के कुछ इलाकों में अधिक बारिश होती है। इस बार अलनीनो ऐसे समय पर आया है जब दुनिया का तापमान पहले से ही जलवायु परिवर्तन के चलते बहुत बढ़ा हुआ है। अधिकतर जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा अलनीनो पिछले 150 सालों में नहीं देखा गया है। इससे पहले 1876 से 1878 के बीच ऐसा अलनीनो आया था। जलवायु विशेषज्ञों का आकलन कहता है कि ये कई तरीकों से दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भारत की अगर बात करें तो हमारा मौसम विभाग पहले से अलनीनो की वजह से कम बारिश का अनुमान जता चुका है। IMD ने कहा है कि मॉनसून की बारिश में 10% या इससे अधिक की कमी हो सकती है। भारत में अलनीनो दक्षिण पश्चिम मॉनसून को कमजोर कर सकता है, वर्षा के अंतराल को बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान कहता है कि मॉनसून के मौसम में अपर्याप्त वर्षा की 60% संभावना है, जिसका अर्थ है कि कई क्षेत्रों में सामान्य से बहुत कम बारिश या सूखा तक पड़ सकता है। IMD के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार 150 से 200 जिलों को सबसे अधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। इस आधार पर केंद्र सरकार ने कमजोर मानसूनी बारिश के जोखिम को देखते हुए देश भर में 197 सबसे संवेदनशील जिलों की पहचान की है। पूर्वानुमान के अनुसार मराठवाड़ा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा की सबसे अधिक संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी उच्च जोखिम है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों और दक्षिण भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरा देश किसी न किसी रूप में प्रभावित होने की आशंका में है। साथियों, हम अगर अब भी नहीं संभले तो शायद फिर संभलने का मौका हमें ना मिले। समय रहते ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम करके और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयासों से ही हम अपनी प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के भयावह पैटर्न को सुधार सकते हैं। तो चलिए आज से ही हम सब मिलकर साझा प्रयास करें।

ए.आर. रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से। मिलीजुली आवाजें थी उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और श्रीनिवास की। और श्रोताओं नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम में अब वक्त है छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद फिर लौटेंगे कार्यक्रम में, करेंगे थोड़ी बातचीत और साथ होगा गीत संगीत का सिलसिला भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी श्रीति। श्रोताओं, 22 जून का इतिहास भारतीय और वैश्विक पटल पर कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा है। सन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून के दिन ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी ने 1939 में कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देश दुनिया के इतिहास में 22 जून की तारीख पर दर्ज दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं ने आज ही के दिन अपने पुत्र अकबर को अपना वारिस घोषित किया था। सन 1986 में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी

डियागो माराडोना ने हैंड ऑफ गॉड गोल किया था आज ही के दिन। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गेंद माराडोना के हाथ से लगकर गोल में चली गई थी, जबकि रेफरी ने समझा कि गेंद सर से लगी है, लिहाजा उसने गोल दे दिया। इस मैच में जीत दर्ज करके अर्जेंटीना अंततः टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहा।

आज ही के दिन सन 1946 में इंग्लैंड और भारत के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ था और वर्ष 2016 में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने स्वयं के उपग्रह सहित कुल 20 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। है ना गर्व की बात।

दोस्तों, हर साल 22 जून को इंटरनेशनल बीइंग यू डे भी मनाया जाता है। ये दिवस लोगों को समाज की उम्मीदों से परे अपनी अनूठी पहचान अपनाने, आत्म मूल्यांकन छोड़ने और अपने वास्तविक स्वरूप का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है। इसकी शुरुआत एक्सेस कॉन्शियसनेस के सह निर्माता और लेखक डॉन डैन हीर द्वारा लिखी गई बुक, बेस्ट सेलर बुक बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड से हुई थी। ये दिन लोगों को अपनी भिन्नताओं का जश्न मनाने, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचने और समाज द्वारा तय किए गए सो कॉल्ड परफेक्ट होने के दबाव से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आत्म निर्णय यानी सेल्फ जजमेंट को छोड़कर खुद के प्रति आभार प्रकट करना सीखिए, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ावा दीजिए। दुनिया भर के लोग इस दिन स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपने वास्तविक जीवन को अपनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों, कक्षाओं और ऑनलाइन सत्रों में भाग लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप जैसे हैं, जो हैं, अपने आप में यूनिक हैं और ये सबसे बड़ी बात है।

दोस्तों, साहसी क्रांतिकारी और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की आज जयंती है। उनका जन्म चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, में हुआ था। वे जुगांतर क्रांतिकारी दल से जुड़ गए और 1930 में चटगांव शासनागार पर हमले में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्रवाई के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कुख्यात सेल्युलर जेल अंडमान भेजा गया, जहां उन्होंने वर्षों तक कठोर कारावास झेला। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया और राजनीति में प्रवेश किया। वे बंगाल विधानसभा और बाद में लोकसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्षशील जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। साहसी क्रांतिकारी और प्रखर स्वतंत्रता सेनानी को आज उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं।

शंकर महादेवन की आवाज़ में मणिकर्णिका फिल्म का गाना था ये। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों, हिंदी ब्रजभाषा के प्रतिष्ठित कवियों में गिने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और शिक्षा क्वींस कॉलेज से प्राप्त की थी उन्होंने। वे बहुभाषाविद थे, जिन्हें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का गहन ज्ञान था। उन्होंने उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोल और विष्णु लहरी जैसी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं की, जो रस भाव और अलंकारों से भरपूर हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे साहित्य सुधा निधि और सरस्वती उनके संपादन कौशल का ही प्रमाण थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की लेखनी ने पारंपरिक भावों को आधुनिकता से जोड़ा और ब्रजभाषा को साहित्यिक गौरव दिलाया। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य प्रेमियों को आनंदित करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को हम नमन करते हैं।

चित्रलेखा फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, गीत रचना थी साहिल लुधियानवी की। दोस्तों, अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवान शहर ज़िले में हुआ था और निधन 12 जनवरी 2005 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की और बाद में फिल्मों में खलनायक की भूमिका में अपनी एक विशेष पहचान बनाई। मिस्टर इंडिया फिल्म में निभाया गया उनका मोगेम्बो का किरदार आज भी लोगों के जहन में जीवित है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और हॉलीवुड फिल्मों में भी अद्भुत अभिनय किया। उनकी गहरी आवाज़ और भावपूर्ण अभिनय ने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया। दामिनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नायक जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं सराहनीय थीं। अमरीश पुरी ने अपने जीवन में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें याद करते हुए आइए सुनवाएं उन्हीं की अभिनीत फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गाना।

पामेला चोपड़ा और मनप्रीत कौर की आवाज़ों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित का संगीतबद्ध किया हुआ गाना था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। और इसी के साथ नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से मुझे

0: good.
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर, लेकर आए हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत। शीर्षक गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, और स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी श्रुति का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। जब तक दिल का मौसम खुशहाल है सारे नज़ारे रंगीन नजर आते हैं, और दिल के गमगीन होते ही नज़ारों में भी उदासी छा जाती है। जब प्यार का एहसास रूह में उतर जाए तो सांसों में भर जाती है उसकी संदली खुशबू, और चेहरा दमकने लगता है दिए के लौ की तरह। जीवन की आराधना और अर्पण की कामना लिए मासूम दिल यूं समर्पित हो जाता है मानो हमेशा से जानता हो कि समर्पण में ही सुख है, संपूर्णता है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दिल से दिल तक पहुंचने वाले इन्हीं एहसासों और जज्बातों के साथ।

दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा, प्यार की आगोश में पल पल रिश्ते, प्यार के बेशकीमती रिश्ते बड़े ही नाजुक और मासूम होते हैं, और इनको पनाह देने के लिए सबसे अच्छी जगह दिल ही है। दिल पर दस्तक देने ये कौन आ निकला है, दिल पर दस्तक देने ये कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में।

अनेक भावनाओं, मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की सारी कहानियों का एकमात्र ठिकाना दिल ही है। दिल से दिल की राह होती है, दिल दिल को पहचानता भी है। दिल से याद करने वालों की सदाएं आहटे बनकर दस्तक देती रहती हैं। पारस्परिक स्नेह से प्रेम तक विस्तारित समस्त भावनाओं की अभिव्यक्ति और अदायगी मुश्किल है, मगर इन सब के लिए दिल में बहुत जगह होती है, जहाँ ताउम्र ये महफूज रहती हैं।

क्या लिखूं क्या ना लिखूं, आरजू मदहोश है, आंसू गिरते हैं पन्नों पर और कलम खामोश है। एक तेरे आने की जो आहट हो तो चांद सूरज उगा दूं कागज़ पर, मेरे एहसास जो कागज़ में रंग भरते हैं, एहसासों के सारे रंग सिर्फ तेरे होने से हैं। शामिल है जब तक तू, तमाम चमकीले रंग दिखते हैं तस्वीरों के, तू नहीं तो रंग ये सारे फीके हैं और वीरान है दिल की दुनिया भी।

वो लम्हा जिससे रंगे ज़िंदगी निखरा हुआ सा, कभी ठहरा हुआ है तो कभी गुजरा हुआ सा। हम पे तन्हाई में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, बन गए जब आपकी तस्वीर हमारे साए। ढूंढ रहे थे जब परछाइयों में भी एक सहारा, फरिश्ता बनकर आप जिंदगी में चले आए।

और इसी गाने के साथ आज का शीर्षक गीत कार्यक्रम अब बस यहीं तक। जिन फिल्मों के गाने आज आपने इस कार्यक्रम में सुने वो फिल्में थीं ममता, रूप तेरा मस्ताना, अदालत, पतिता और प्रेम पर्वत। आवाजें थीं गानों के लिए हेमंत कुमार, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। संगीतकार थे रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, शंकर जयकिशन और जयदेव। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, हसरत जयपुरी और जानिसार अख्तर। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का, सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन, राग है शुद्ध सारंग।

0: राग शुद्ध सारंग में पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये, FM के 102.4 MHz पर। दिन का 1 बजने को है,
1: थोड़ी ही देर में समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने

0: की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsavul.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रूपए होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: यह विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया

0: जाएगा। उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगे। इसे लेकर झारखंड में खुशी की लहर है। दिवंगत शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन ने इसे गर्व का क्षण बताया।
1: स्वर्गीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए ये एक भावुक कर देने वाला पल भी है और एक गर्व का क्षण भी है, क्योंकि भारत सरकार ने उनके दशकों के योगदान को, संघर्ष को और उनका झारखंड वासियों के प्रति जो समर्पण था उसको नवाजा और एक सम्मान दिया।
0: केंद्र प्रायोजित पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई उद्योगों को की जरूरत के अनुरूप विकसित करने की मंजूरी मिली है और इनके अपग्रेडेशन पर 5 साल में कुल 1687 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत एक उन्नत आईटीआई को हब बनाकर उसके साथ 4 स्पोक आईटीआई जोड़े जाएंगे, जहां इंडस्ट्री आधारित नए ट्रेड शुरू होंगे और छात्रों को प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रांची में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का सफल समापन हुआ, जिसमें 100 टन से अधिक आमों की बिक्री हुई। इस महोत्सव के दौरान करीब 60 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की गई और राज्य के जनजातीय किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ। नाबार्ड ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, बाजार से जोड़ने और जनजातीय आजीविका को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के छिपादोहर, बरवाडीह, महुआ मिलान रेलखंड में कमीशनिंग कार्य के लिए कल से 27 जून 2026 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आयुष्मान भारत योजना की खूबियां बताई। श्री सेठ ने कहा कि इस योजना से 9 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देशवासी जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, खेत खलियान बिक जाता था, बेटा बेटी को पढ़ाई छूट जाता था, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड, देश भर के करोड़ों लोग आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। लगभग 9 करोड़ से ऊपर लोग अब तक देश भर में आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से देश भर के साथ ही रांची में 6 परीक्षा केंद्रों पर UGC नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पालियों में 30 जून तक होने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बता दें कि UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानी पूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस से पहले अपनी परीक्षा तिथि, पाली, समय और अपने

0: परीक्षा केंद्र की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को अपने आवंटित केंद्रों का पहले से दौरा करने की सलाह दी गई है, ताकि वे स्थान और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित हो सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राज्य में कल बारिश के दौरान वज्रपात से सीपीआई नेता और एक महिला वार्ड सदस्य समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरों सहित दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए। इसके साथ ही देवघर, बरहेट और चित्तरपुर में भी वज्रपात से मौतें हुई। संताल कोयलांचल में 4, खूंटी में 2 और रामगढ़ में 2 लोगों की जान गई। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 461 अंक बढ़कर 77,264 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,153 पर है। सेक्टर के हिसाब से देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में बढ़त देखी गई। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास पहले, पश्चिमी सिंहभूम के तनिष्क कुमार दूसरे और रांची के यश रंजन तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे सम्मान। पीएम सेतु योजना के तहत झारखंड के 7 आईटीआई को उद्योगों की जरूरत के अनुसार किया जाएगा विकसित। 1,687 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रांची में नाबार्ड के आम महोत्सव में 100 टन से अधिक आम की हुई बिक्री। जनजातीय किसानों और किसान संगठनों को मिला बड़ा बाजार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की परीक्षा आज से शुरू। रांची के 6 परीक्षा केंद्रों पर भी 30 जून तक 2 पालियों में चलेगी परीक्षा। निषेधाज्ञा लागू। और राजधानी रांची में चल रही 5वीं झारखंड स्टेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का हुआ समापन। पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास बने चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्रों से समाचारों का प्रसारण हो रहा था। अभी ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:20 हुए हैं। लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हर 3 में से लगभग एक महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

कुछ आवश्यक संदेशों के बाद हाजिर हैं हम कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और इस संगीत में सफर के हम सफर में हूँ आपकी रेडियो सखी श्रीति। नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं देवदास फिल्म का ये गाना। कविता कृष्णमूर्ति, पंडित बिरजू महाराज और माधुरी दीक्षित की आवाज़ों में। इस्माइल दरबार का संगीत निर्देशन है और गीत लिखा है नुसरत बद्र ने।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक, सरक, सरक, सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क

आतिफ असलम की आवाज़ में लव यात्री फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था तनिष्क बागची का और गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का गाना के और सुजैन डिमेलो की आवाज़ों में। चिरंतन भट्ट का संगीत बद किया हुआ गाना है, गीत लिखा है शकील आजमी ने।

दिल का क्या कसूर, इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। समीर का लिखा हुआ गीत था और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं कलंक फिल्म का टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: President of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh, was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia on a two-day visit to further advance the special partnership between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. He will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de la Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing Senator Ivan Cepeda by a very small margin. According to preliminary results, with almost all votes counted, de la Espriella received about 12.95 million votes, around 49.7% of the votes, while Cepeda received about 12.7 million, around 48.7% of the votes. The election marks a sharp shift in Colombia's politics after the presidency of Gustavo Petro, who was constitutionally barred from running again and backed Cepeda as his successor. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha, and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in, Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom. In a statement outside 10 Downing Street, he said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
4: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौद तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं गीत संगीत का सिलसिला। जी हाँ, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। फिल्म संगीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रीति। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शेफ फिल्म के गाने से। अरमान मलिक की आवाज़ में है ये गाना। अमाल मलिक का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है रश्मि विराग ने।

पहचान फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। आनंद मिलन का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था समीर ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं मैं हूं ना फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की। अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

रहना है तेरे दिल में। जी हां श्रोताओं, इसी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में। हरीश जयराज का संगीत निर्देशन था, गीत लिखा था समीर ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। दिन के 2:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण होने जा रहा है। अलग राज्यों के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री देशम गुरु शिबू सोरेन को कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेंगी। देशम गुरु के सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रपति के हाथों इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। यह प्रतिष्ठित सम्मान शिबू सोरेन को लोक कल्याण और आजीवन आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और आस्था से जुड़े पवित्र धार्मिक स्थल जाहेर थान जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जाहेर थान, देशावली और माझी थान जैसे पवित्र जगहों पर जाकर शीश नवाना एक ऐतिहासिक पल है। चंपई सोरेन ने इसे पूरे आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा सम्मान बताया है।
1: आज बड़ा गौरव आदिवासी लोग समझ रहा है, मुझे बहुत गौरव भी लग रहा है कि आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहाड़पुर गांव में जाहेर थान में जाहेर गाड़ में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। हमारा आस्था, हमारा अस्मिता जो जुड़ा हुआ है, ये आज ऐतिहासिक का पल है।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड के सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षित आवास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने मेहरमा प्रखंड के गझंडा पंचायत स्थित अमडिया में एक नए नाला निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने धनबाद मंडल के सीपीडीआर बरवाडीह महुआ मिलान रेलखंड पर तीसरी अप लाइन जोड़ने के लिए 23 से 27 जून तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की घोषणा की है। इस कारण रांची सासाराम एक्सप्रेस सहित कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं हटिया नई दिल्ली और टाटा जम्मू तवी जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान बरवाडीह स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी बंद रहेगा। राज्य में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में हवाओं के रुख में बदलाव के साथ ही बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के

0: दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले होनहार निशानेबाजों को सीधे राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
1: ये तृतीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप शूटिंग का ये होने जा रहा है। क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा थी बच्चों की संख्या में, उसी लिए 4 दिवसीय इसको किया गया है। इसमें 4 दिन में करीब करीब 400 बच्चे शामिल हैं।
0: झारखंड T20 क्रिकेट के लीग चरण का समापन हो गया है। जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आखिरी मुकाबलों में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स ने शानदार जीत दर्ज की। पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने विराट सिंह के धमाकेदार 106 रनों की बदौलत 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रनों के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं दूसरे मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने एक तरफा खेल दिखाते हुए धर्माद डायमंड्स को 9 विकेट से शिकस्त दी और टूर्नामेंट में विजयी समापन किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज

तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं। इसका उत्तर है लोकटक झील में द्वीप मिट्टी घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है। तो इसका उत्तर है मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं। तो श्रोताओं इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन साइबेरिया रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है। तो इसका उत्तर है डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है। 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका आरोह अवरोह थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों,

बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया

0: गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुने दादरा और भजन। कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान।

भजन और दादरा अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के स्वर में। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम है झारखंड के लोकगीत, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों, सभी श्रोता मित्रों को हमारा जोहार। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ संथाली लोकगीत। कलाकार हैं स्टीफन सोरेन और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

सोरेन एवं साथियों की आवाज में संताली लोकगीत सुनाएंगे, जिसमें कटनी से संबंधित लोकगीतों को हमने शामिल किया है। प्रथम प्रस्तुत गीत में कहा गया है कि बोए हुए धन को समय अनुसार धूप वर्षा मिलते रहने से एवं काम समय पर होने से धान का पौधे का बढ़ना सुनिश्चित हो जाता है। धान बढ़कर पक जाने से उसे काटकर घर ले आने की तैयारी की जाती है। उपयुक्त गीत में इसकी ही झलक मिलती है।

में दर्शाया गया है कि ग्राम प्रधान के अनाज भंडारण गृह में अनाज का जो ढेर है वो बिल्कुल विशालकाय हाथी के समान दिखता है। अब वहाँ चुटिया व चूहों की भरमार है। चुकी खाने हेतु उन्हें तदात मात्रा में अनाज सुनिश्चित है। वे सभी अपने को धनवान समझने लगे हैं। उनके उछल कूद व चहलकदमी से बिरला महाराज भी डरकर शांत बैठे हुए हैं। अर्थात ग्रामीणों को अब माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है। वे काफी हर्षित हैं। लंबे समय तक उन्हें अब अकाल भुखमरी की चिंता नहीं सताएगी। उनके जोश, लगन, ईमानदारी के समक्ष अकाल भुखमरी को भी अब चिंता होने लगी है।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आप सुन रहे हैं संथाली लोकगीत। कलाकार हैं स्टीफन सोरेन और उनके साथी। लीजिए सुनिए इनकी अंतिम प्रस्तुति।

की अगली प्रस्तुति। इस गीत में कहा गया है कि खेत खलिहान का सारा कार्य संपन्न होने व अच्छी फसल की प्राप्ति से कृषक गण काफी हर्षोल्लास से सराबोर हैं। नृत्य अखाड़े में वे खाद्य व पेय पदार्थ की कमी को दरकिनार करते हुए अर्थात भूख प्यास को भूलकर केवल मात्र खुशी में मग्न रहते हैं। प्रस्तुत गीत में भी यही दर्शाया गया है कि किस प्रकार कृषकों में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना है। वे किसी भी काम को समूह में करना ही अधिक पसंद करते हैं।

आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है ये FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार।

तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेट्टा। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद नगर निगम परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप नगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद कर्मियों ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाकर आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कम उम्र में विवाह होने पर लड़कियों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक दुष्परिणामों को बेहद सजीव तरीके से प्रदर्शित किया। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की फुलवरिया शाखा में आज दोपहर एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार रसकलाल पासवान पर ईंट पत्थर से अचानक हमला कर दिया। हमले में सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हंगामा बढ़ता देख जब स्थानीय लोगों ने आरोपी दिलीप यादव को रोकने का प्रयास किया तो उसने खुद को भी मारकर घायल कर लिया। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने कपाली ओपी क्षेत्र के कबीर नगर स्थित केजीएन मेडिकल दुकान में रंगदारी न देने पर की गई फायरिंग और लूटपाट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को जमशेदपुर के आजाद नगर से दबोचा। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड की टीम का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्य भर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ियों के लिए जुलाई में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं खट्टा मीठा फिल्म के गाने से। के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में है ये गाना। प्रीतम का संगीत निर्देशन है, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने। आइए सुनते हैं।

सिर्फ तुम। जी हाँ श्रोताओं, इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ गीत था और आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल की। और अब आइए आपको सुनवाते हैं दिल से फिल्म का गाना। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में है ये गाना। ए आर रहमान का संगीत निर्देशन है, गुलजार का लिखा हुआ गीत।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, एआर रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म दिल से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं उदित नारायण, आमिर खान और शंकर महादेवन की। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है, संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। आप ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और फिलहाल फिल्म संगीत के कार्यक्रम से मुझे यानी श्रीति को अब इजाज़त दीजिए। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिएगा अपनी रेडियो सखी पूनम शर्मा के साथ। फिलहाल सुनिए अकेले हम अकेले तुम का, तुम फिल्म का ये गाना।

मस्तानी जा बुरा कर दे हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतों भरा ये सफर जारी रहेगा श्रोताओं।

जुदाओं हम चल रहे हैं सुहाने गीतों के कारवां के संग। बहरहाल ये गीत आप सुन रहे थे नदिया के पार इस फिल्म से। आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह की थी और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके कि मैं मौत से

0: सुनिए। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत दत्ता नाइक का था और फिल्म थी धूल का फूल।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज सोमवार भी है और हमें आप श्रोताओं से प्यार भी है। आराधना फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था सचिन देव बर्मन का।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार के। फिल्म थी जॉनी मेरा नाम।

और फिल्म का ये गाना था श्रोताओं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, माया गोविंद के बोल थे, संगीत था भूपेन हजारिका का। और श्रोताओं इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं तक, इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा रांची केंद्र से

0: समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु, चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटकी स्थित सिमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड की सिनपुर ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास और मदरसा जामिया इस्लामिया के मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिलाया। और हजारीबाग में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा 4 दिवसीय मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 250 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचार मुख्यांश आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं युवाणी और मैं हूं आपका दोस्त नीलेश राज। आज जून 22 को मैं आपके साथ हाजिर हूं युवाणी के इस खास अंक में। दोस्तों, आज का सफ़र थोड़ा अलग है। हम शुरुआत करेंगे आसमान से, एक ऐसी बेटी की कहानी जो सितारों तक पहुँची और फिर वहीं से नज़र घुमाएंगे अपनी इस धरती की तरफ, जिसे बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। इसके बाद बात करेंगे एक बड़े सपने की, यानी विकसित भारत 2047। तो दोस्तों, ये सिर्फ तीन अलग अलग टॉपिक्स नहीं हैं, ये कड़ियां हैं हौसले की, जिम्मेदारी की और सपनों की। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की। कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को हुआ था। एक छोटे शहर में पैदा हुई लड़की जिसने बचपन से ही आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया था। जब उनकी उम्र की लड़कियां शायद गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थी, कल्पना जी सोचती थी हवाई जहाज के बारे में, सितारों के बारे में।

इस सवाल के बारे में कि आसमान के पार आखिर क्या है। उस जमाने में जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को लड़कियों के लिए सही फील्ड नहीं माना जाता था, कल्पना जी ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल रहा होगा वो दौर। समाज के सवाल, परिवार की चिंताएं और कहीं ना कहीं खुद के अंदर का डर भी। लेकिन कल्पना जी ने हार नहीं मानी। इसके बाद वो अमेरिका गई, मास्टर्स किया, फिर पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और 1994 में उन्हें नासा में जगह मिली। 1997 में उनकी पहली स्पेस फ्लाइट STS-87 में वह इतिहास का हिस्सा बन गई, भारत में जन्मी पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई। लेकिन यह मिशन आसान नहीं था। इस फ्लाइट के दौरान एक सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो बेकाबू होकर घूमने लगा। पूरी दुनिया की निगाहें कल्पना जी पर थी। बड़ी मुश्किल और सूझबूझ से रोबोटिक आर्म के जरिए उस सैटेलाइट को फिर से काबू में लाया गया। शुरू में कुछ सवाल उठे, लेकिन जांच के बाद कल्पना जी को पूरी तरह क्लीन चिट मिली। इसी हादसे ने साबित किया कि दबाव में भी शांत रहना और हार ना मानना, यही असली प्रोफेशनलिज्म है। 2003 में स्पेस में उड़ जाने का उन्हें फिर से मौका मिला। मिशन STS-107 स्पेस शटल कोलंबिया पर। यह 16 दिन का मिशन जिसमें कल्पना जी और उनकी टीम ने स्पेस में लाइफ, कंबशन और स्पेस में ह्यूमन बॉडी पर असर पे 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, धरती से हजारों किलोमीटर दूर एक भारतीय बेटी पूरी दुनिया के लिए विज्ञान की सेवा कर रही थी। लेकिन 1 फरवरी 2003 भारत के लिए कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। लॉन्चिंग के दौरान शटल के एक हिस्से को हुए मामूली से नुकसान की वजह से धरती पर वापसी के दौरान कोलंबिया टूट गया। लैंडिंग से सिर्फ 16 मिनट पहले कल्पना समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए चले गए। पूरा देश रो पड़ा था उस दिन। करनाल की गलियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, हर किसी की आंखों में आंसू थे। लेकिन दोस्तों, मौत उनकी कहानी का अंत नहीं बनी, बल्कि उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज भी स्कूलों, सड़कों और सैटेलाइट का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है, क्योंकि कल्पना चावला सिखाती हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सही या गलत फील्ड नहीं होती, और डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ाने की हिम्मत ही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप भी कोई बड़ा सपना देख रहे हैं और लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो उनकी कहानी याद रखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस हौसला चाहिए। और दोस्तों, जो धरती कल्पना ने उस छोटी सी खिड़की से हजारों किलोमीटर ऊपर से देखी थी, उतनी नीली, उतनी सुंदर, उतनी नाजुक आज उसी धरती को बचाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इन्हीं बातों के साथ प्रस्तुत है आज का पहला गीत, एक टुकड़ा धूप।

0: आपने सुना 2020 में आई फिल्म थप्पड़ से सॉन्ग एक टुकड़ा धूप, जिसके गीतकार थे शकील आजमी, संगीतकार थे अनुराग सैकिया और गायक थे राघव चैतन्य।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: दोस्तों, अंतरिक्ष से दिखने वाली वो नीली सुंदर धरती आज खतरे में है। सब कभी बेमौसम बारिश, कभी बढ़ती गर्मी, कभी अचानक आने वाले तूफान, तो हम सब देख रहे हैं और ये सब इशारा करते हैं जलवायु परिवर्तन की तरफ। आज सवाल ये है, इसमें हम युवाओं की क्या भूमिका है? दोस्तों, सच कहूँ तो हम सिर्फ दर्शक नहीं बने रह सकते, हमें इस मैदान में खिलाड़ी बनना पड़ेगा। हमें खुद आगे आकर अपनी रोज़मर्रा की आदतों में छोटे छोटे

बदलाव करने होंगे जिससे जिससे जलवायु परिवर्तन में कमी हो। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा, पानी की बर्बादी रोकनी होगी, जहाँ मुमकिन हो साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब लाखों युवा इन्हें अपनाते हैं तो असर बहुत बड़ा होता है। साथ ही जागरूकता फैलाना, आज हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पर्यावरण के बचाने के लिए, मैसेज फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, करियर और पढ़ाई में पर्यावरण को जगह देना। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में आज भी बहुत स्कोप है। झारखंड, जहाँ जंगल और खनिज संपदा दोनों ही मौजूद हैं, ऐसे राज्य में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के युवा अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, क्लाइमेट चेंज कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारी आज की जिंदगी का हिस्सा है और इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ प्रस्तुत है आज का दूसरा गीत।

कर थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था विशाल और शेखर ने, गायक थे चिन्मयी श्रीपद और शेखर राजवानी। दोस्तों अभी हमने बात की अपनी धरती को बचाने की, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पर्यावरण तक नहीं रुकती है, ये एक बड़े सपने का हिस्सा है, विकसित भारत 2047। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है। इसमें हम युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। सोचिए दोस्तों 2047 तक हमारी उम्र क्या होगी। आज के ज़्यादातर युवा जो 20 से 25 साल के हैं तब 40 से 45 साल के होंगे, यानी अपनी करियर के पीक पर। मतलब ये सपना किसी और का नहीं है, ये सपना हमारा है और इसे साकार करने वाले हाथ भी हमारे ही होंगे। तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट, यानी सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, आज की दुनिया में स्किल्स ज़रूरी हैं। दूसरी जिम्मेदारी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। हमें सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी बनाने वालों की ज़रूरत है, तो ऐसी सोच रखिए कि आप खुद नौकरी बना सकें। तीसरी बात सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे वोट देना, ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। सबसे ज़रूरी बात लोकल को ग्लोबल बनाना, अपनी कला संस्कृति और प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना। दोस्तों विकसित भारत 2047 कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ये एक मूवमेंट है और हमें ज़रूरत है जज्बे की, ठीक वैसा ही जज्बा जो कल्पना ने अपनी सपनों के पीछे लगाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सपना हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ प्रस्तुत है आज का तीसरा गीत, अपना बना लें।

में आई फिल्म भेड़िया से सॉन्ग अपना बना ले, जिसके गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत दिया था सचिन जिगर ने और गायक थे अरिजीत सिंह।

दोस्तों, अब सुनते हैं कुछ समसामयिक जानकारियाँ। बड़ी बातें, बड़े सपने, लेकिन इसी जज्बे की झलक आज मैदान में दिख रही है। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में कल स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया और इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। और आज यानी 22 जून को सबकी निगाहें होंगी अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के मुकाबले में, जहाँ मेसी की टीम जीत के साथ नॉकआउट की तरफ बढ़ना चाहेगी। क्रिकेट में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रॉफर्ड मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 158 का स्कोर बनाया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 19 ओवर एक बॉल में ही 168 बनाकर 6 विकेट में बाजी मार ली। पाकिस्तान और नीदरलैंड पर लगातार 2 जीत के बाद ये टीम इंडिया का पहले हार थी, लेकिन सेमीफाइनल की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये दोनों टूर्नामेंट सिखाते हैं कि मेहनत और जज्बा से बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ आज की आखिरी कड़ी तक हम पहुंच चुके हैं। आज हमने जाना कि कैसे कल्पना चावला का जीवन हमें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा को अपनाते हुए हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं और विकसित भारत के प्रण को दृढ़ बनाते हैं। और इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने की सबसे बड़ी शक्ति है हमारे युवा, जिनके ज्ञान और ऊर्जा से विकसित भारत अपना साकार होगा। आइए हम संकल्प लें कि ऊंची उड़ान भी भरेंगे, भारत का सम्मान भी करेंगे और राष्ट्र निर्माण में योग्य भी बनेंगे। इन्हीं कामनाओं, शब्दों और बातों के साथ दिस वॉज निलेश राज साइनिंग ऑफ। नमस्कार।

ये थी आज की युववाणी FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के 5:30 होने ही वाले हैं। प्रस्तुत है श्रमिक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोताओं, दूसरों की तरह बनने की दौड़ में खुद की अनोखी पहचान को मत खोइए। आप जैसे भी हैं इस दुनिया के लिए बेहद खास है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो साथी मंजू और आप सुन रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोताओं, आज जब मैं आईने के सामने खड़ी थी तो मुझे एक बात का एहसास हुआ। पता है क्या, हम रोज खुद को सवारते तो हैं, लेकिन खुद की तारीफ करना भूल जाते हैं। हम हमेशा किसी और जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, दूसरों की तरह बनने की दौड़ में खुद की अनोखी पहचान को खोना नहीं है हमें। तो आज की शाम बस अपने नाम कीजिए, खुलकर मुस्कुराइए। अगले आधे घंटे हमें साथ करेंगे जानकारियों भरी बातें, और मनोरंजन के लिए है प्यारे प्यारे गाने भी। तो बने रहिए ना हमारे साथ पूरे आधे घंटे तक FM के 102.4 MHz पर कार्यक्रम कल कारखाने में।

श्रोताओं, आज बात एक ऐसे गुण की जो इंसान को इंसान बनाता है, और वो है ईमानदारी। कहने को तो ईमानदारी महज कुछ अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका वजन पूरी कायनात से भी बड़ा है। जानते हैं, ये गुण जब हमारे श्रमिक भाई बहनों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों में दिखता है, तो इसका मोल 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि एक श्रमिक की सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी है। जब एक राजमिस्त्री बिना किसी की निगरानी के भी सीमेंट और रेत का सही अनुपात मिलाता है कि किसी का घर कमजोर ना रह जाए, तो वो ईमानदारी है। जब एक फैक्ट्री वर्कर मालिक की गैर मौजूदगी में भी उसी शिद्दत और लगन से मशीन चलाता है जैसे वो कंपनी उसकी खुद की हो, तो वो ईमानदारी है। जब एक ऑटो चालक सवारी का कीमती सामान या पैसों से भरा पर्स छूटा हुआ देखकर उसकी सवारी को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंचा देता है, तो वो ईमानदारी है।

सच मानिए श्रोताओं, बेईमानी से कमाया हुआ शीश महल भी एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, लेकिन ईमानदारी से कमाए गए 200 या 500 से भी जब घर में चूल्हा जलता है ना, तो उस सूखी रोटी का स्वाद भी दुनिया के सबसे महंगे 56 भोग के बराबर होता है ना? क्योंकि उस कमाई में बरकत होती है। रात को तकिए पर सिर रखते ही सुकून की नींद होती है और आपके बच्चों के लिए एक ऐसा संस्कार होता है जो उन्हें जिंदगी भर सिर उठाकर जीना सिखाता है। याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी से जब आप काम करते हैं तो आप सिर्फ अपना और आपके परिवार का पेट नहीं पाल रहे होते, बल्कि आप गिरते हुए मानवीय मूल्यों के बीच पूरे समाज के सामने एक जीती जागती मिसाल बन रहे होते हैं। तो क्यों ना आज इस खूबसूरत मोड़ पर खुद से एक पक्का वादा करते हैं। चाहे हम दफ्तर में एसी में काम कर रहे हो या चिलचिलाती धूप में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पसीना बहा रहे हो, हम ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। शॉर्टकट से मिली सफलता और रुतबा अस्थाई है, कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन ईमानदारी से कमाई गई मिली उससे जो इज्जत होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। सच कहे तो असली सिकंदर वही है जो उस तंगी में भी अपनी ईमानदारी का दामन ना छोड़े। अगर आपके इरादे नेक है, आपकी मेहनत में कोई मिलावट नहीं है और आपके माथे पर ईमानदारी का पसीना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप हर मुश्किल को पार करेंगे, हर चुनौती को मात देंगे। इसी अटूट हौसले, जज्बे और सच्चाई के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो आपकी रगों में जीत का सुकून भर देगा।

0: आकाशवाणी एट 90
1: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कुछ और खास जानकारियों के साथ। आइए सुनते हैं अब हरेंद्र प्रताप सिंह की जानकारी वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों की भूमिका इस विषय पर।
2: औद्योगिक परिदृश्य हमेशा से बदलते रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ औद्योगिक परिस्थितियाँ तेजी से तथा गहरे रूप में बदलावों के दौर से गुजर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय उद्योग दुनिया के साथ व्यापक रूप में जुड़ गया है। इसकी शुरुआत भारतीय सरकार की उन दो नीतियों के कारण तेजी से आगे बढ़ी जिसे 1991 में अपनाई गई थी। उन नीतियों को कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दुनिया में पहले दौर की औद्योगिक क्रांति जो कोयला, पानी और भाप से शुरू हुई थी और जो 1750 से 1850 तक यानी लगभग 100 वर्षों तक लगातार चलती रही, वह निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही है। इन बदलावों का उद्योगों से जुड़ी हर चीज पर बदलावी प्रभाव देखा जा रहा है। ट्रेड यूनियनों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी, श्रम और पूंजी के प्रति यूनियन और श्रमिकों के बदलते विचारों पर भी, उनकी मांगों या मांग पत्र और कार्यशैली में भी बदलाव देखे गए हैं। सिर्फ यूनियनों के ही नहीं बल्कि उद्योगपतियों के व्यवहारों में भी परिवर्तन आए हैं। भारतीय आजादी के बाद यूनियनों को नेतृत्व देने वाले वैसे व्यक्ति तो अब नहीं रहे। अब सारी जिम्मेदारियां श्रमिकों पर ही हैं, यानी अपना काम करना और अपनी यूनियन का संचालन भी करना। ये दोहरी भूमिका निभानी है। उन्हें अपने उद्योग और अपने तरह के उद्योगों में आ रहे हर प्रकार के बदलावों की जानकारियां रखनी होगी। दुनिया में हो रहे बदलावों खास करके ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में होते परिवर्तनों की सूचनाएं रखनी उनके काम का एक हिस्सा हो गया है। यूनियनों की इस भूमिका के उद्योग में इनोवेशंस यानी नई चीजों के इजाद करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चीन ने यही तो किया और दुनिया के दो नंबर की आर्थिक शक्ति बन गया। अमेरिका में हर छोटे मुद्दों पर अध्ययन और रिसर्च करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। व्यापक विकास इसी से होता है। इसके बार्गेनिंग क्षमता की गुणवत्ता में भी ठोसपन आता है। ये दौर ऐसा है जहां श्रमिकों की दक्षता की परीक्षा होने लगी है। उनमें तकलीफें हैं, सफलता और असफलता दोनों है, चोट है, दर्द है। कहते हैं कि इस दौर से गुजरो तो पता पाओगे, चोट और दर्द का रिश्ता भी समझ जाओगे। ट्रेड यूनियन करने वालों को समझने की जरूरत है कि उद्योगों के निर्माण की जड़ में श्रम और पूंजी के अलावा विज्ञान और तकनीक की भूमिका होती है। विज्ञान के निरंतर विकसित होते रहने के कारण तकनीक का स्वरूप भी उन्नत होता रहता है। इससे मैन मशीन रेशियो में भी बदलाव यानी कम बेसी होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग श्रमिकों से नई कार्यशैली, नए स्किल या कौशल की जरूरत महसूस करते हैं। इन्हीं बदलती परिस्थितियों में नई नई चुनौतियों के साथ तनाव भी पैदा होते रहते हैं। पुराने छोड़ने और नए को अपनाने में एक स्वाभाविक अस्वीकारता या विरोध का

काम करना पड़ता था। महिला श्रमिकों को भी उसी अमानवीय व्यवहार से गुजरना पड़ता था। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बोनस आदि जैसे विषयों की कल्पना मात्र भी मानवीय मूल्यों में या उनकी चेतना में शामिल तक नहीं थी। कारखाने या उद्योगों के मालिकों में पूंजी से पूंजी कमाने की इस मानसिकता से मालिक मजदूर के बीच शत्रुतापूर्ण स्थितियां पैदा होने लगी। ऐसा दुखद जीवन काफी दशकों तक चलता रहा। उस समय ट्रेड यूनियन भी नहीं हुआ करते थे। धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक नेतृत्व वर्ग ने ही उस समय श्रमिकों के पक्ष में मजबूत आवाज उठाना शुरू किया। इस बीच कार्ल मार्क्स नामक चिंतक ने 19वीं शताब्दी के आखिर में श्रमिकों के इस बुरी स्थिति का जिम्मेदार कल कारखाना चलाने वालों को बताया। उन्होंने कहा कि कारखानों में लगी पूंजी श्रमिकों के श्रम की चोरी करता है। कैपिटल एक्सप्लॉयट्स लेबर, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। इसका प्रभाव मालिक मजदूर के टकराव और बदलाव पर पड़ा। स्ट्राइक, बंदी, टूल डाउन का असर उत्पादन पर और भारत की बात करें तो औद्योगिक विकास दर पर खराब पड़ने लगा। औद्योगिक संबंध में कटुता आने लगी। मार्क्स के विचारों से प्रभावित ट्रेड यूनियन नेता तनाव या शत्रुतापूर्ण संबंध को वर्ग संघर्ष कहते थे। बहुतों ने को नहीं मालूम कि महात्मा गांधी एक ट्रेड यूनियन चिंतक या नेता भी थे। जब दक्षिण अफ्रीका में वे 1915 में भारत आए तो उन्होंने मजदूर महाजन का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। गांधी ने कहा कि उद्योग व्यक्तिगत दौलत नहीं है, ये समाज की संयुक्त संपत्ति है। इसीलिए दोनों यानी श्रमिक और कारखानेदार इनके ट्रस्टी हैं। दोनों का उद्देश्य व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। गांधी जी ने ये सिद्धांत अहमदाबाद के कपड़ा तथा अन्य श्रमिकों के साथ ट्रेड यूनियन करके किया था। जमीन से जुड़े थे। उन दिनों जमशेदपुर के कारखानों के श्रमिकों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों तथा मानवीय मूल्यों से टाटा घराना प्रभावित था। तो उन्होंने आरंभ से ही यहाँ के श्रमिकों से सीधे वार्तालाप करते रहे और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप और वार्ता के कारण श्रमिक पक्षी निर्णय लिए गए। गांधी जी ने श्रमिकों का यहाँ भी नेतृत्व किया था। अंग्रेजी शासन था, अस्थायी श्रमिकों की बेहतर स्थिति जो आज है भारत में उन दिनों वैसी नहीं थी। गांधी जी के विचारों से प्रभावित यूनियनें उद्योग और श्रमिकों के संबंध बेहतर करके स्थिति को रचनात्मक बनाना शुरू किया। श्रमिकों के जीवन स्तर अच्छे होने लगे। इस बीच दुनिया के श्रम संगठनों ने श्रमिकों के लिए आंदोलन एवं मांग उठाना, एकजुटता दिखाना शुरू किया। लेकिन सारे मालिक इस तरह के तनावपूर्ण औद्योगिक वातावरण के पक्षधर नहीं थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आने लगा। 1919 में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना जिसमें सरकार, कारखानेदार और श्रमिकों के राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस त्रिपक्षीय संगठन को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। यह संगठन आज भी चल रहा है, लेकिन इसकी भूमिका को अब और भी सक्रिय करने की आवश्यकता है। ILO एवं भारत के ट्रेड यूनियनों की सक्रियता की गतिशीलता बढ़ानी होगी। आज आवश्यकता इसलिए है कि श्रमिकों के सामने तलब तनख्वाह का मुद्दा तो है ही, उसी की तरह पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति और पृथ्वी के अस्तित्व पर आए खतरों, बढ़ती गर्मी, ऋतुओं के स्वभाव में आ रहे खतरनाक बदलावों से कृषि उत्पादन में आ रहे संकट, ग्रामीण श्रमिकों या नरेगा श्रमिकों के जीवन स्तर में गिरावट जैसे सवालों पर ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय मंचों और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर चिंतन करना आज के श्रम आंदोलन के मुद्दे होने चाहिए। जिस रूप में आज भी देशों के बीच युद्ध होते हैं, जिससे श्रमिकों द्वारा बनाए गए भवन, अस्पताल, स्कूल, पुल, सड़क ध्वस्त कर दिए जाते हैं, पलायन की पीड़ा और रिफ्यूजी की बढ़ती संख्या हमारे सभ्य समाज और सरकार होने पर हंसी उड़ाती है। मैं समझता हूँ कि श्रम आंदोलन को इन चुनौतियों को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए तथा सरकारों के सामने आवाज बुलंद करनी चाहिए। उनका मानवीय समाधान निकालने की तरफ ध्यान जाना चाहिए।
ऐसे समय में ट्रेड यूनियन के सामने परीक्षा की स्थिति पैदा हो गई है। उन्हें आज आत्मनिरीक्षण करना

0: होगा, अपनी कमियों कमजोरियों से निजात पाना होगा। ट्रेड यूनियन की दो प्रकार की कमजोरियों से अगर निपट लेती है ट्रेड यूनियन तो श्रमिकों और उद्योग दोनों को फायदे होंगे, तभी भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। ट्रेड यूनियन की ये दो बीमारियां क्या हैं? वे दो बीमारियां हैं अति अर्थवाद यानी इकोनॉमिज्म, अति राजनीतिवाद यानी पोलिटिसाइजेशन। हर राजनीतिक पार्टी आज अपने साथ एक ट्रेड यूनियन बना लेती है, कानूनी या गैर कानूनी भी, और आपस में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई करती हैं। श्रमिक दिशाहीन होने लगते हैं, कानूनी लड़ाई से समय की बर्बादी होती है और श्रमिकों तथा श्रमिक नेताओं तथा उद्योगों की रचनात्मकता की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ट्रेड यूनियन की वही भूमिका और वही जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ मुद्दे बदल गए हैं, और वे मुद्दे अगर संतुलित ढंग से न सोचे समझे जाएं तो स्थितियां जटिलतर होती जाएंगी। आगे क्या करना चाहिए? आगे छह बातों की मैं चर्चा आखिर में करना चाहता हूं। पहला, कि गर्चे ट्रेड यूनियन त्रिपक्षीय मामला है लेकिन इसे द्विपक्षीय संबंधों की धरातल पर प्रभावपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन और यूनियन की है। दूसरा, औद्योगिक संबंध को बेहतर बना के रखना। तीसरा, राजनीतिक मुद्दों के कुप्रभाव से ट्रेड यूनियन को बचा कर रखना। चौथा, शत्रुतापूर्ण संबंध की जगह मित्रतापूर्ण मतभेद बनाकर रखें, मनभेद नहीं। पांचवा, श्रमिक पक्षी कानून की हिफाजत करें। और आखिर में छठी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय का महत्वपूर्ण मुद्दा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, जो जीडीपी की लगभग आधी दौलत देश को देते हैं, उनके तलब तनखा सामाजिक सुरक्षा की निरंतर निगरानी और बढ़ोतरी होती रहे। धन्यवाद।
1: वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में ट्रेड यूनियनों की भूमिका, इस विषय पर हमारे साथ आज जानकारी साझा कर रहे थे हरेंद्र प्रताप सिंह। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, अब बात देश के करोड़ों ग्रामीण और गरीब परिवारों की रसोई का नजारा बदलने वाली एक बहुत ही अहम योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की खास मंशा महिलाओं को चूल्हे के हानिकारक धुएं से मुक्ति दिलाना और उन्हें एक स्वस्थ स्वच्छ जीवन प्रदान करना है। साल 2016 में शुरू हुई ये यात्रा आज 2026 में देश के कोने कोने तक पहुँच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत मिलने वाले लाभों और इस योजना के तहत कुछ नए और अहम बदलावों की। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पूरी तरह से डिपॉजिट फ्री यानी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसमें सिलेंडर की सुरक्षा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप और डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड की फीस शामिल होती है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत पहला गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में साल 2026 के लिए इस योजना के सब्सिडी नियमों में बदलाव किया है। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी साल में अधिकतम 4 सिलेंडरों तक ही सीमित कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औसत खपत को देखते हुए और व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए EKYC कराना जरूरी है। अगर कोई लाभार्थी लगातार 9 महीनों तक अपने गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग नहीं कराता है तो उसका कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है, जिसे दोबारा EKYC के जरिए ही चालू कराया जा सकेगा। वहीं त्योहारों पर मिलने वाली खास सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि इस योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता क्या है और कौन आवेदन कर सकता है। आवेदक का भारत का नागरिक होना और एक वयस्क महिला यानी उम्र 18 साल या उससे अधिक होना जरूरी है। उस परिवार में पहले से कोई और एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। प्रवासी परिवारों के लिए नियमों को बेहद खास बनाया गया है और आसान बनाया गया है। अगर आप राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र देने में असमर्थ है तो सिर्फ एक स्वघोषणा पत्र देकर भी उज्ज्वला 2.0 का कनेक्शन ले सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से डिजिटल है। आप अपने नजदीकी एलपीजी वितरक के पास जाकर

ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर घर बैठे उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। किसी भी तरह की सहायता या शिकायत के लिए आप उज्ज्वला हेल्पलाइन 1800-266-6696 पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

गुलजार के लिखे गीत को राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में फिल्म झूम बराबर झूम से अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। और श्रमिक श्रोताओं, इसी गाने के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यही संपन्न करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मंजू को अनुमति। नमस्कार।

0: कल कारखाने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आप सुन रहे हैं कुड़माली झूमर, कलाकार हैं रोहिन चंद महतो। लीजिए सुनिए इनकी अगली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। रोहिन चंद्र महतो आपको सुना रहे थे कुड़माली झूमर। इसके साथ ही यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को जोहार।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा से।

किसान भाइयों, आज हम अपने चर्चा की शुरुआत एफपीओ अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पाद संगठन किसानों के लिए कितना कारगर है, इस विषय से करते हैं। किसान भाइयों, किसान उत्पाद संगठन छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहतर और कारगर है। यह किसानों की सौदेबाजी क्षमता को बढ़ाता है, बिचौलियों को खत्म कर उपज का बेहतर दाम दिलाता है और थोक में खाद बीज मिलने से खेती की लागत भी कम करता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। एफपीओ भारतीय किसानों के लिए एक बहुत शक्तिशाली और कारगर माध्यम है। यह कृषि को घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे के व्यवसाय में बदलने में मदद करता है। आइए एफपीओ के कुछ फायदों की चर्चा करते हैं। एफपीओ से जुड़े किसान बीज, उर्वरक और कीटनाशक थोक में खरीदते हैं, जिससे ये चीजें बाजार भाव से काफी सस्ती उन्हें मिल पाती है। किसान भाइयों, जब अपनी फसल अकेले बेचते हैं तो उन्हें कम दाम मिलते हैं, लेकिन जब एफपीओ के जरिए पूरी फसल एक साथ और सीधे बड़ी मंडियों में बेची जाती है तो उन्हें ऊंचे और सही भाव मिलते हैं। इतना ही नहीं, पंजीकृत एफपीओ को नाबार्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं से बिना गारंटी लाखों रुपए का ऋण सब्सिडी के साथ भी प्राप्त होते हैं। एफपीओ किसानों को सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अनाज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके सीधे बाजार में बेचने में सक्षम बनाते हैं।

किसान भाइयों, और अब कुछ बातें सॉइल हेल्थ कार्ड की। किसान भाइयों, सेहत की मिट्टी माने खेत की मिट्टी की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताती है कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है। इससे आप उतना ही सही खाद का उपयोग करते हैं जितनी फसल को जरूरत होती है। ऐसा देखा गया है कि मिट्टी की जांच के बिना किसान अक्सर धुआंधार रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं जिससे पैसे की बर्बादी होती है। सही जांच से आप केवल जरूरत के अनुसार खाद खरीदते हैं जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

इसके अलावा जब पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से संतुलित पोषण मिलता है तो फसल स्वस्थ होती है और पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, जरूरत से ज्यादा या गलत रासायनिक खाद का इस्तेमाल मिट्टी की सेहत को खराब करता है और जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। मिट्टी टेस्ट से खेत की मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी जांच से

में मिट्टी के मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर और मिट्टी के गुण जैसे पीएच मान और ऑर्गेनिक कार्बन का सटीक पता चलता है। इसलिए हमें मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। और अब कुछ बातें किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी किसानों को कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए अत्यंत सस्ते और आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराने की एक सरकारी योजना है। इसके तहत किसानों को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए कई बेहतरीन लाभ और सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं केसीसी के लाभ के बारे में। किसान भाइयों, केसीसी पर सामान्य ब्याज दर 7% प्रतिवर्ष है, लेकिन समय पर अगर आप ऋण चुका देते हैं तो किसानों को सरकार की ओर से 3% की त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन छूट मिलती है, जिससे कि ये ब्याज दर महज 4% तक रह जाती है। किसानों को 1,60,000 से या कुछ मामलों में 3,00,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के, बिना किसी जमीन गिरवी रखे मिल जाती है। इस योजना के तहत किसान आवश्यकता के आधार पर 5,00,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस कार्ड का उपयोग सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने, कृषि उपकरणों की मरम्मत और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के खर्चों के लिए भी किया जा सकता है।

0: और इस चर्चा के बाद अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है बदलते मौसम में भेड़ बकरियों की देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार रत्नाकर, जो भ्रमणशील पशु चिकित्सक गम्हरिया के कृषि पदाधिकारी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं।
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों, आज हमारी बातचीत हो रही है पशु चिकित्सालय गम्हरिया में भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी श्री संजय कुमार रत्नाकर जी से। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मौसम आने वाला है बरसात का और गर्मी का भी है, तो इस बदलते मौसम में हम अपने पशुओं का देखभाल कैसे करें। खास करके आज हम इनसे भेड़ और बकरियों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में भेड़ और बकरी पालन बहुतायत मात्रा में होती है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी ग्रामीणों को, पशुपालकों को, किसान भाइयों को हमारा जोहार और नमस्कार।
1: आप बताएं सर, ग्रामीण भाइयों को और पशुपालकों की कि वो इस बदलते मौसम में अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों की देखभाल कैसे करेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतेंगे।
2: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम लोग ये जान लें कि किसी भी बीमारी के लिए उसका उपचार करने से बेहतर है कि हम उसका बचाव करें। पहले अगर हम बचाव कर लेते हैं तो हम बहुत सारी हानियां और जो बहुत सारे खर्चे हैं, दवा दारू आदि की खर्च जो है उससे बच जाते हैं। तो उससे बचाव होता है, उससे सुविधा होता है। और खास करके बरसात के मौसम में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, जमीन पर भी हर जगह पानी पानी होता है, जहाँ भी पशु चरते हैं, चारा के लिए खाते हैं, उसमें पानी होता है, उसके वजह से तरह तरह के कीटाणु, तरह तरह के बैक्टीरिया वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस मौसम में हमें पशुओं पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उनके देखभाल के लिए ये काफी आवश्यक होता है। तो इसमें दो तीन चीज जो जरूरी है कि पशुओं में जहाँ भी हम पहला कि पशु जहाँ रखते हैं जी। तो पशु में तीन चार चीजों की बात है कि पशुपालकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं कि एक होता है पहला वेंटिलेशन, दूसरा होता है सैनिटेशन, तीसरा होता है वैक्सीनेशन।

0: और चौथा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये चार चीज का हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वेंटिलेशन पहला हुआ। वेंटिलेशन मतलब कि जहां भी हम पशुओं को रखते हैं वो जगह खुला खुला होना चाहिए, जहां की हवा आराम से आ जा सके, हवा का आवागमन अच्छा हो, बंद जगह नहीं हो, वहां पर खिड़की वगैरह उसमें अच्छे तरह से हो, खिड़की दरवाजे हो, और वो जगह भींगा भींगा सूखा या सूखा हो, भींगा भींगा ना हो, उस पर जैसे कि बरसात का पानी वगैरह आना उस पर ना आता हो, इस तरह का कहीं छत चूरा है, कहीं से बरसात का झाटा सा रहा है, ये सब चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हुआ वेंटिलेशन। दूसरा हुआ सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब हुआ साफ सफाई। जहां हम पशुओं को रखते हैं, भेड़ बकरियों को रखते हैं, तो उनकी साफ सफाई, उस स्थान की साफ सफाई होनी चाहिए। समय समय पर कीटनाशक से, फिनाइल वगैरह से उसकी सफाई होनी चाहिए, और साथ ही उसके आसपास के क्षेत्र जो हैं उसकी भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां से नहीं तो वहां से कीटाणु वगैरह आ सकते हैं,
1: प्रवेश कर सकते।
0: हाँ, तीसरा चीज हमने बताया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हुआ टीकाकरण। पशुओं का समय पर टीकाकरण होना आवश्यक होता है। उनका जो भी टीकाकरण है, आपके निकट के जो भी पशु चिकित्सक हैं, उनके सलाह से आपको पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके लिए कुछ टीकाकरण के बारे में मैं बता भी सकता हूं कि जैसे एक होती है पीपीआर का वैक्सीन। इसका वैक्सीन समय समय पर लगाना चाहिए, खास करके पहला वैक्सीन जो की है इसका 3 महीने के एज पे लगता है, और उसके बाद 3 साल के बाद फिर वो रिपीट होता है। दूसरा होता है फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको कि हमारे लोकल भाषा में खुरहा या खुरैया भी कहते हैं। तो खुरैया का वैक्सीन 3 महीने के एज से लगना शुरू होता है। और गोट पॉक्स का वैक्सीन, ये वैक्सीन जो कि है सिर्फ बकरियों में लगता है, भेड़ में नहीं लगता है। ये गोट पॉक्स का वैक्सीन भी हम 3 से 5 महीने के उम्र में इसको लगवाना चाहिए, फिर उसके बाद सालाना। और शीप पॉक्स है, ये शीप पॉक्स का वैक्सीन केवल भेड़ में लगता है, ये भी 3 से 5 महीने के उम्र में लगता है, उसके बाद सालाना लगता है। उसके बाद एंटेरोटॉक्सिमिया का वैक्सीन होता है, ये भी 3 से 5 महीने के एज में लगता है। उसके बाद इसका करीब 1 महीने के बाद इसका बूस्टर लगाना होता है, और फिर उसके बाद साल में एक बार सालाना लगता है। और हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया का वैक्सीन होता है, ये भी 3 से 5 महीने के उम्र में लगता है, और फिर 1 महीने के बाद इसका बूस्टर डोज लगता है, और फिर एनुअल लगता है। ये नॉर्मल शेड्यूल होता है। तो पशु पालक जो भी हैं, पशु चिकित्सक जो की हैं, समय पर अगर वैक्सीन लगा के रखते हैं तो जो बड़ी बीमारियां हैं, जो जानलेवा हो सकती हैं, उनके लिए उनसे बचाव हो सकता है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और हमारे पशुपालक भाई अपने पशुधन को बचाने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं? आपने कहा बीमारी होने से पहले अगर हम बचाव का ही उपाय कर लें तो वो ज्यादा बेटर है, हम खर्चे से बच जाएंगे। और वो क्या सावधानियां बरतें इस समय कि उनके पशु स्वस्थ और अच्छे रहें?
0: देखिए, जैसे कि हमने बताया कि जहां पर भी इनको रखते हैं वहां पे हमको ये ध्यान रखना होगा कि वो जगह भींगा नहीं हो, गीला नहीं हो, मॉइस्चर से फ्री हो, तो उससे बीमारी होने की संभावना कम होगी। दूसरा चीज है, हमें समय समय पर उसका डिवर्मिंग करना चाहिए। डिवर्मिंग जो पेट में कृमि होती है, बरसात के दिन में खास करके ये कृमि होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले इसमें उसका डिवर्मिंग कर देना चाहिए। इसके लिए हम जैसे कई तरह के दवा आते हैं, एल्बेंडाजोल आते हैं, पिपराजिन आते हैं, उसके बाद फेनबेंडाजोल आते हैं, इनका टेबलेट या सिरप आता है, उसको आप निकट के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से आप उचित डोज में, जितने बड़े आपके बकरी हैं या भेड़ हैं उनके साइज के हिसाब से उचित डोज में उसको दे सकते हैं। आमतौर पे अगर हम 3 से 4 महीने के अंतराल पे इसको रिपीट करते रहें तो उसके जो पेट में कृमि होता है वो कृमि होने की संभावना कम हो जाती है, नहीं होगी, और इसकी वजह से उसका ग्रोथ जो की है अच्छा होगा। हाँ, इसके साथ ही एक होता है जैसे कि एक्टोपैरासाइट्स भी, जो उनके शरीर के ऊपर कीड़ा हो जाता है, टिक्स, माइट, लाइस, ये सब होते हैं, तो उसको इसके लिए कुछ दवा आती है जो कि पानी में मिला के उनके शरीर पर इसको स्पॉन्जिंग कर देना होता है, नहला, या जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको पानी में डुबा देते हैं हम लोग, हाँ, उनका सर को ऊपर रख के।

0: उसमें भी ध्यान देना होता है कि जहाँ बहुत ज्यादा पानी का जमाव हो, जल जमाव हो, उस तरह के क्षेत्र में चरने न दिया जाए, काहे कि वहाँ पे कीटाणुओं के पनपने का, तरह तरह के कीड़े मकोड़े होने का संभावना, विषैले कीट होने का, और पॉइजनस पौधे उगने की भी संभावना, जहरीले पौधे उगने की भी संभावना काफी रहती है, जिसके कारण पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है और इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसके साथ ही ये सब बरसात से बचा के रखना, खास करके निमोनिया होने का भी संभावना इस सीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, निमोनिया से बचाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत घातक होता है। दूसरी चीज ये है कि हमको ये ध्यान देना होता है कि जब किसी जानवर को कोई बीमारी होती है, खास करके निमोनिया या फीवर या इस तरह की संक्रामक बीमारी होती है, तो उस जानवर को अन्य जानवरों से अलग करके ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसके साथ ही उसको कुछ दिनों तक, कम से कम 3-4 दिन या 1 हफ्ता तक उसको चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, घर में रख के ही
1: बांध कर उसको चारा देना चाहिए।
0: और बरसात में कोशिश करें कि अगर घर में रख के ही सूखे चारा वगैरह से अगर काम चल जाता है तो कोशिश अच्छा, वो सबसे अच्छा है। कहे कि बाहर जाने से बरसात में भींगने का की संभावना ज्यादा रहती है और भींगे जगह पर चलने से वहाँ पर कीटाणु वगैरह और इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा।
2: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे पशुपालक भाई जो पशुओं का पालन करते हैं, जो इसको अपने आय का साधन बनाए हुए हैं, अगर वो आपकी बातों का ध्यान रखकर अपने पशुओं का अभी से देखभाल करें तो उनके पशु स्वस्थ रहेंगे और उन्हें अच्छी आय भविष्य में देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और सबको हमारी शुभकामना।

आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे गम्हरिया के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार रत्नाकर। और अब आइए सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत शारदा सिन्हा से।

आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत शारदा सिन्हा से। और अब चलते चलते आइए कार्यक्रम में कुछ बातें करते हैं बरसात के पूर्व पशुओं में टीकाकरण की। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में नमी और उमस के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं, जिससे पशुओं में जानलेवा संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बरसात के पूर्व पशुओं में टीकाकरण बहुत जरूरी है, ताकि बारिश शुरू होने से पहले ही पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए और वे स्वस्थ रहें। किसान भाइयों, मानसून के दौरान गलघोटू, लंगड़िया बुखार, खुरपका, मुंहपका जैसी घातक बीमारियां पशुओं में तेजी से फैलती है, जिसके लिए टीकाकरण इन बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। पशुओं के बीमार होने पर, खासकर दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। टीका लगाने से पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है और इनका उत्पादन क्षमता भी बनी रहती है। संक्रामक रोगों के कारण कई बार पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, इसलिए समय पर टीका लगवाएं। पशुपालकों को इससे भारी आर्थिक नुकसान से आप बचा सकते हैं और पशु चिकित्सा के महंगे खर्च से भी आप बच सकते हैं। इसलिए बरसात के पूर्व अपने पशुओं के टीकाकरण अवश्य करवा लें। और इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि जगत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं श्रोताओं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ठीक 7 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 7:10 पर होगा कार्यक्रम जिले में आजकल। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जनसेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। शत प्रतिशत अंक हासिल कर

0: बनी नेशनल टॉपर और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न, 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को 255 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। यह पुनर्गठित योजना 31 मार्च 2031 तक 100% केंद्रीय सहायता से सभी राज्यों में लागू रहेगी। इसमें विधि संजीवनी और एआई संचालित न्याय सेतु चैटबॉट जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए 3 करोड़ लाभार्थियों तक कानूनी मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आदिवासियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। उन्होंने रामगढ़ की स्थानीय समस्याओं के जल्द निदान का भरोसा दिया।
1: एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब की चिंता करते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है उन्हीं सब को लेके हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं रामगढ़ आया हूँ। यहाँ पे मेरी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात हुई है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस की सौगात मिली है। स्थानीय सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी शिवधाम से इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। सांसद की पहल पर शुरू की गई इस 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवा का लाभ देवघर, मधुपुर, जरमुंडी, पौड़ियाहाट, गोड्डा और महगामा के लोगों को मिलेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-112-500 जारी किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची जिले के इटके स्थित सेमरा गांव का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद विलियम प्रदीप तिर्की, प्रभु सहाय तिर्की, महावीर महली और एनएसजी कमांडो अजय भगत के परिजनों तथा वीर माताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों का यह गांव हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने तकनीकी खामी पर जेएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया। पोर्टल में गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थी उत्तर कुंजी नहीं देख सके थे। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। राज्य में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत आज धनबाद नगर निगम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप नगर आयुक्त संदीप अनुराग के नेतृत्व में निगम अधिकारियों और कर्मियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। उप नगर आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।
2: के द्वारा शपथ लिया गया कि अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे जिले को नशा मुक्त बनाना है, अपने देश को नशा के कुप्रभाव से बचाने के लिए हम लोग सब नशा पान को त्याग करेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिनों में भी अलग अलग अंचलों में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलेगा।
0: सरकार ने विशेष परिस्थितियों में स्थायी कर्मचारियों को 1 महीने का अग्रिम वेतन देने का निर्णय लिया है। इस राशि को 2 महीने के भीतर बिना ब्याज के लौटाना होगा। तय समय पर भुगतान न करने पर इसे 12 महीनों में सामान्य ब्याज के साथ किश्तों में चुकाना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: राजधानी रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की कॉमर्स स्ट्रीम की छात्रा अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। अवनी ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस अभूतपूर्व सफलता से न केवल उनके विद्यालय बल्कि पूरे रांची शहर और झारखंड का नाम देश भर में रोशन हुआ है। जमशेदपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित निवारणपुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक विशेष टीम ने आज घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। एटीएस के अधिकारियों और जवानों ने मौके से तकनीकी साक्ष्य जुटाए और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। रांची के आईजी मनोज कौशिक ने इसकी पुष्टि की है।
1: उसमें वो महत्वपूर्ण कांड था, तो महानिदेशक सब पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार उस केस को हम लोग एटीएस को ट्रांसफर किए हैं और कांड अनुसंधान अंतर्गत है और जो भी उसमें फर्दर लिंकेजेस है उसमें वर्क किया है।
0: सीबीआई ने धनबाद एसबीआई शाखा के 25 करोड़ रुपए के घोटाले में 20 साल से फरार दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान के तहत आरोपी ब्रिज भूषण प्रसाद को महाराष्ट्र और करतार सिंह को छत्तीसगढ़ से दबोचा गया। वर्ष 2005 में इस मामले में दोनों आरोपी पहचान बदलकर छिपे थे। धनबाद पुलिस ने निरसा क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इन आरोपियों का धनबाद और पश्चिम बंगाल में पुराना आपराधिक इतिहास रहा है।
2: पूछताछ करने पर ये लोग चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे। इन लोगों के पास 5 गाड़ी रिकवरी मिला था और इन लोगों को निशानदेही पर 8 और गाड़ी हमको मिला था और वो भी रिकवरी हुआ है। और जिस साधन यूज करके वो मोटरसाइकिल का चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल का जो लॉक खोल देते हैं, वो भी साधन हमको बरामद हो गया है।
0: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाली 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल आज रांची में संपन्न हुआ। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित इस ट्रायल में राज्यभर से 55 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने बताया कि जुलाई में विशेष शिविर के बाद अंतिम 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की जाएगी।
3: जुलाई 28 से लेकर 8 अगस्त तक तमिलनाडु में जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता है हॉकी इंडिया के द्वारा, जिसके लिए आज झारखंड टीम का ट्रायल हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिला से कई खिलाड़ी आए हैं। इनका भी हम लोग ट्रायल लेंगे और इनमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनको 30 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेंगे। इन 30 खिलाड़ियों का 15-20 दिन का कैंप कराएंगे और उसमें से जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए दिशा कार्यक्रम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। देश भर में एआई तकनीक से मिलेगी कानूनी मदद। प्रधानमंत्री के जन सेवा काल के उपलक्ष्य में देवघर गुड्डा को मिली 7 नमो एम्बुलेंस की सौगात। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सेमरा में अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में झारखंड उच्च न्यायालय सख्त। उत्तर कुंजी न दिखने की तकनीकी खामी पर जेएसएससी से मांगा जवाब। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में रांची की कॉमर्स छात्रा अवनी केजरीवाल ने रचा इतिहास। 100% अंक हासिल कर बनी नेशनल टॉपर। और 16वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड का चयन ट्रायल रांची में संपन्न। 55 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है।

0: और देखते ही देखते नशा शरीर दिमाग परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन सेवन तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। समय कम बचा है, इसलिए देवघर में वरीय अधिकारियों का लगातार भ्रमण जारी है। पर्यटन विभाग के निदेशक नमन प्रियस तकड़ा ने बताया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हर व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह देवघर बासुकीनाथ आने में परेशानी न हो।
2: जो हम लोगों ने पिछले बैठक में ये एक्सपीरियंस किया था, इसको एड्रेस किया जा सके, उनको काफी हद तक एड्रेस किया गया है। कुछ आवंटन वगैरह की जो बातें हैं वो डिस्कस की गई, क्या हम लोग नया और बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारे जो श्रद्धालु बने वो आए और उनको बेहतर जलापन का वो लाभ मिल सके सुरक्षित एवं बिल्कुल सुरक्षित वहां पे। और हम लोग आशा करते हैं कि पूर्व के वर्ष में जिस तरह से अच्छा हुआ है और भी बेहतर हो 2024 का श्रावणी मेला वहां पे। मेरा ग्रीनेज को हम लोग और बेहतर बनाएंगे, टेंट सिटीज में हम लोग अलग से हेड नॉकिंग करेंगे ताकि वहां पे जो भी हम लोग डेली बेसिस पे सुविधा दे सके उसको हम लोग बेटर मैनेज कर सके।
1: इधर देवघर नगर निगम को नई प्रशासक सुलेचना मीना मिल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पेयजल, साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था है। सावनी मेला को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो।
3: नगर निगम का प्राथमिकता उसकी यही रहेगी नगर निगम की कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और इसमें हम ट्रैकर्स यूज करेंगे। जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर सफाई करनी यदि नहीं पहुँचते हैं और तो ऐसी समस्याओं को टैकल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ट्रैक किया जाएगा, उनके ट्रैकर सिस्टम होंगे। 179 वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में हमने सुना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है देवघर के लोगों के लिए, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है।
1: नशा मुक्ति को लेकर देवघर में जिला प्रशासन सख्त है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक परवीन पुष्कर खुद कमान संभाले हुए हैं। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इस बार देवघर को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना पर काम किए जा रहे हैं ताकि देवघर एक नशा मुक्त जिला बनकर उभरे।
4: नार्कोटिक्स का अगर हमें सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, अरेस्टिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलें और एक ये जो जागरूकता अभियान 15 दिनों का है उसमें सभी लोग भाग लें और ये जागरूकता अभियान सभी लेवल्स पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर लेवल पे चलेगा। जागरूकता के साथ साथ साथ में कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी और इन 15 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ड्रग पेडलर, जितने भी ड्रग पेडलर्स ये काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
5: जैसे नशा मुक्ति को लेकर जो जागरूकता है 26 जून को जो इसके लिए अभियान का जो एक दिवस है उससे पहले 2 सप्ताह का एक अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में, हॉस्पिटल में और अन्य सार्वजनिक जगहों में जहाँ पे सभी बच्चे और सभी युवाओं को ये संदेश दिया जाएगा कि नशा मुक्त होने से देश के विकास में और खुद के जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।
1: प्रदेश की एकमात्र एम्स अस्पताल में लगातार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लड बैंक खुल जाने से आम लोगों को अब जीवन दान के रूप में ब्लड बैंक से ब्लड की आवश्यकता पूरी होगी। आशीष कुमार अकम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

0: श्रोताओं, कहते हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, पर वृद्धावस्था में योग की क्या भूमिका है, बुजुर्गों को कौन कौन से आसन करने चाहिए, कितने समय करने चाहिए, कब करने चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी के लिए आज हम मिलते हैं पतंजलि के योग शिक्षक श्री इंद्रपाल वर्मा जी से। तो इंद्रपाल जी नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है।
1: योग आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है।
0: अच्छा,
1: हम आत्मा ईश्वर परमात्मा।
0: अच्छा, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। अच्छा अच्छा गुरुजी, योग शुरू करने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से क्या परामर्श लेना जरूरी है?
1: व्यक्ति स्वस्थ है तो किसी के परामर्श लेने की जरूरत नहीं है।
0: नहीं है,
1: शायद ध्यान पूर्वक योग करे वही सुरक्षित है सब।
0: अच्छा अच्छा गुरुजी, कहते हैं कि योग सभी के लिए अच्छा है, पर क्या बुजुर्गों को योग करना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ शरीर में लचीलापन और ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है?
1: हाँ, बुजुर्गों को योग करना जरूरी है लचीलापन और ताकत बनाए रखने के लिए।
0: अच्छा, यानी बुजुर्गों को योग करना चाहिए,
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। हाँ। अगर मन में ये भ्रम है कि हम बूढ़े हो चले हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाँ, तो योग हम कैसे करें, ये बात नहीं है।
1: नहीं नहीं,
0: वो कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, ताकत मिलेगा, जो लचीलापन है
0: जी
1: ठीक रहेगा, एकदम अपना स्वस्थ रहेगा।
0: अच्छा, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्गों को देखा गया है कि थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं चलने में, तो ये सब भी वो योग से ठीक हो सकता है। अच्छा अच्छा गुरु जी, कौन कौन से योग आसन बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है?
1: सहज और सुखपूर्वक किए जाने वाले आसन बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है।
0: सहज आसन जो है वो,
1: सहज और सुखपूर्वक जो
0: किया जा सके
1: है,
0: अच्छा,
1: वो सब सुरक्षित है।
0: कोई आसन ऐसे हैं जो आप सलाह देना चाहेंगे बुजुर्गों को कि वो करें ये आसन?
1: हाँ, लेकिन अवस्था के ऊपर ध्यान रख के तब बताया जाता है।
0: अच्छा, योग शिक्षक होते हैं, वो उनकी अवस्था देख के बताते हैं कि आप ये आसन कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, योग करते समय बुजुर्गों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
1: योग करते समय बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्रिया प्रक्रिया सुखपूर्वक हो, शरीर
0: अच्छा।
1: के किसी भी लचीलापन खिंचाव ना पड़े।
0: अच्छा, मतलब बुजुर्ग वो आसन कर सकते हैं
1: जिसमें
0: कि उनके शरीर पे कोई जोर ना पड़े।
1: हाँ, जोर ना पड़े। हाँ।
0: अच्छा अच्छा गुरुजी, योग किसी भी समय किया जा सकता है या कोई खास समय होता है?
1: देखिए, योग अपना सुबह में नित्य कर्म से निवृत्त होके उसके बाद आप आसन कर सकते हैं।
0: अच्छा, अच्छा,
1: वो लाभप्रद है।
0: अच्छा, वो ज्यादा लाभ करेगा अगर आप सुबह की नित्य क्रिया के बाद अगर योग करते हैं तो वो ज्यादा लाभ करेगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा समय है जब कर सकते हैं योग, शाम के समय या रात के समय?
1: देखिए, कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, खाना खाया है उसका 4-5 घंटा बाद करना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: इसमें क्या है, सुबह में आप तो कुछ खाए नहीं है
0: जी, पेट बिल्कुल खाली है,
1: उसके बाद आप योग
0: कर सकते हैं,
1: करने से आपको ज्यादा फायदा होगा।
0: अच्छा, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग सुबह में नहीं कर पाते हैं तो वो शाम में भी अगर खाने के 5 घंटा बाद करना चाहे तो वो
1: कर सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा गुरुजी, योग का नियमित रूप से करना आवश्यक है या कुछ दिन के अंतराल पर भी किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए हम इस हफ्ते किए योग, फिर हम बीच में एक हफ्ता छोड़ दिए और फिर से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं ऐसा?
1: नहीं, उसमें ठीक नहीं है वो।
0: अच्छा, नियमित करना चाहिए
1: योग है, मतलब हमेशा नियमित करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ, तभी फायदा करेगा।
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं है बीच में गैप कर दिया 10 दिन, फिर
0: शुरू कर दिया,
1: अच्छा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा,
0: नहीं होगा,
1: नुकसान ही होगा।
0: अच्छा अच्छा, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि बुजुर्गों को आलस बिल्कुल नहीं करना है?
1: नहीं नहीं,
0: है ना, उन्हें
1: लगातार
0: योग करना चाहिए,
1: फायदा।
0: अच्छा अच्छा, योग करने के लिए कितनी अवधि बुजुर्गों के लिए सही है, यानी कितनी देर तक बुजुर्गों को योग करना चाहिए?
1: योग के लिए कोई अवधि नहीं है, योग अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए।
0: अच्छा, जितनी देर

0: वो कर सकते हैं
1: हाँ,
0: उतनी
1: जितना
0: देर वो
1: देरी
0: कर।
1: कर सकते हैं उसी कर लो।
0: अच्छा, लेकिन कुछ तो अवधि कुछ निर्धारित होगी, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति भी करते हैं तो आधा घंटा, एक घंटा।
1: वैसे हाँ, अपना ऊपर डिपेंड करता है,
0: अच्छा,
1: मेरा हम और कर सकते हैं तो
0: लेकिन
1: चलो
0: कम से कम कितनी देर तक करना चाहिए?
1: कम से कम डेढ़ दो दो घंटा 2.5 घंटा लग जाता है।
0: अच्छा,
1: 1.5 घंटा तो हो ही जाता है।
0: हाँ,
1: जैसा मेरे ही ले लीजिए,
0: हाँ,
1: हम अपना योग करते हैं जो
0: हाँ,
1: 45 मिनट तक हम कर लेते हैं
0: अच्छा,
1: बैठ
0: तो मतलब
1: एक ही सेटिंग में।
0: इस उम्र में आप 45 मिनट 50 मिनट तक कर
1: हाँ
0: लेते हैं?
1: हाँ
0: आपकी उम्र कितनी होगी गुरुजी?
1: अभी 92 चल रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: बताइए, तो यानी आप 92 साल की उम्र में आप 45 से 50 मिनट तक कर लेते हैं योग?
1: हाँ पाल भाती
0: जी,
1: किया 40-45 में,
0: हाँ,
1: फिर अनुलोम विलोम 40-45 मिनट कर दिया
0: हाँ,
1: ऐसा।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो जो बुजुर्ग 60-70 साल की उम्र में है वो तो आराम से 1-1.5 घंटा कर ही
1: नहीं
0: सकते
1: तो
0: हैं,
1: हाँ थोड़ा कम करेंगे कोई ऐसा नहीं, लेकिन उनको फायदा होगा।
0: फायदा होगा अगर एक डेढ़ घंटा कर लेते हैं तो। अच्छा अच्छा गुरुजी, वृद्धावस्था में बुजुर्ग कई बार तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो
1: हाँ
0: क्या योग से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जा सकता है?
1: हाँ योग से तनाव और मानसिक संतुलन को ठीक किया जा सकता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ
1: योग करने से
0: हाँ अच्छा, तो मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है योग
1: हाँ
0: करने
1: बहुत
0: से।
1: अच्छा होता है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्गों को तो बहुत ही ज्यादा लाभ
1: बहुत
0: होगा
1: बहुत
0: अगर वो
1: अच्छा
0: योग
1: है।
0: करें,
1: हाँ
0: क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, कई
1: हाँ
0: बार उनको ऐसा महसूस होता है कि हम परिवार से कट रहे हैं, समाज से कट रहे हैं, और वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर वो योग करेंगे
1: हाँ
0: तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो
1: ठीक होगा।
0: जाएगा और वो
1: हाँ
0: तनाव से दूर हो जाएंगे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: हाँ
0: गुरुजी, वृद्धावस्था में कई बुजुर्ग जो है वो रोग ग्रसित हो जाते हैं, साथ ही संतुलन में भी कमी आ जाती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या योग करने से उन्हें लाभ हो सकता है?
1: हाँ योग धैर्य पूर्वक करने से सारी व्याधियां और धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: यानी अगर कोई रोग है तो वो भी
1: वो भी
0: योग
1: एकदम
0: से
1: खत्म
0: ठीक
1: हो
0: हो
1: जाता
0: सकता
1: है।
0: है? अच्छा,
1: हाँ
0: तो उसके लिए कोई खास खास आसन होंगे, जो खास रोग के लिए खास आसन बने हुए हैं
1: हाँ
0: क्या?
1: वो सब जैसा रोग का अनुसार ही मतलब बताना पड़ता है, कैसा क्या बीमारी है, क्या है, क्या
0: अच्छा
1: योग
0: अच्छा
1: है।
0: तभी वो फायदा करता है। अच्छा, तो योग करने के लिए क्या खान पान पे भी कुछ ध्यान देने की जरूरत होती
1: हाँ
0: है?
1: खान पान में नियमित रखना है। खाने में ऐसा नहीं है आज 1 बजे खाया कल
0: हाँ
1: 4 बजे खाया,
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं है।
0: हाँ
1: हरेक नियम रखना है कि 1.5 बजे खाना है तो 1.5 बजे खा ही लेना।
0: अच्छा,
1: मेरा लीजिए, हम अपना आके योग से क्लास से
0: हाँ
1: आके आखिरी अंग जो है मेरा
0: जी,
1: गोटा मूंग
0: हाँ
1: बादाम और थोड़ा चना ये सब
0: सुबह
1: लेके
0: में लेते हैं।
1: उसको लेते हैं,
0: अच्छा
1: उसके बाद कुछ नहीं लेते हैं, मेरा वही आहार मतलब
0: अच्छा
1: नाश्ता है।
0: अच्छा मतलब सुबह में जब आप योग करके आए
1: हाँ
0: उसके बाद आप फुलाया हुआ मूंग चना
1: हाँ वो
0: और
1: अंकुरित
0: बादाम,
1: है ना। हाँ
0: हाँ, अंकुरित करके,
1: उसमें गुड़ दे के
0: गुड़
1: शक्कर
0: दे के। अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ
1: वही लेते हैं,
0: हाँ
1: उसके
0: हाँ
1: बाद कुछ नहीं लेते हैं।
0: अच्छा, ये नाश्ता हो गया।
1: हाँ नाश्ता खाने में 12:30-1 बजे 1.5 बजे के अंदर अंदर थोड़ा चावल ले लेते हैं, सब्जी रहती दाल रहती है
0: दाल
1: तो
0: रहती है।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: वही खाते हैं।
0: अच्छा,
1: फिर शाम को 5:30-6:00 के अंदर अंदर, लेकिन ज्यादातर 6 बजे हम मेरा हो जाता है,
0: अच्छा,
1: एक रोटी लेते हैं
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: कुछ नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: एक रोटी एक सब्जी बस,
1: बस सब्जी रहती दाल रहती है
0: दाल
1: तो
0: रहती है।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: और रात
0: वो
1: को
0: 6 बजे
1: फिर
0: ही ले लेते हैं।
1: हाँ बस
0: हाँ हाँ
1: फिर रात
0: रात
1: को
0: में,
1: 8:30-9 बजे
0: हाँ,
1: दूध लेते हैं बस,
0: दूध ले लेते
1: वो
0: हैं।
1: भी
0: अच्छा
1: चीनी नहीं डालते हैं,
0: अच्छा
1: चीनी छोड़ा हुआ हमको कितना साल हो गया।
0: हाँ, अच्छा,
1: ये समंदर नमक नहीं लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं,
0: सेंधा नमक
1: ये
0: लेते हैं।
1: सब
0: अच्छा,
1: वैसे ही गुड़ पाउडर।
0: गुड़ का पाउडर।
1: हाँ
0: अच्छा, यानी चीनी नहीं लेते हैं, गुड़ का पाउडर ही उसमें
1: वही
0: लेते
1: लेते
0: हैं।
1: हैं कितना साल हो गया पता नहीं छोड़ा हुआ।
0: यानी बुजुर्गों को चाहिए कि वो योग करने के साथ साथ अपना एक नियम बनाए, खास समय पे जिस समय वो नाश्ता करते हैं नाश्ता करें, जिस समय खाना

0: खाते हैं उसमें रोज ही उसी समय पे खाना और नाश्ता करें, ये आपके कहने का मतलब है।
1: अच्छा, दूसरा है हरिद्वार बेटा, हमको भी अपना माँ को भी दोनों को भेजा, दोनों गए थे, वो तो नहीं गई कर, लेकिन हम हाँ अपना सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और मेरा सब हुआ।
0: अच्छा, यानी आप लोगों को भी योग की शिक्षा देते रहते हैं।
1: देते हैं मैं करते हैं,
0: खुद भी करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं।
1: हाँ, सिखाते।
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो इस उम्र में आप इतना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को इतना व्यस्त रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो बुजुर्ग ये कार्यक्रम सुनेंगे उनको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी कि जब आप 92 साल की उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें भी करना चाहिए।
1: हमको टाटा मोटर अलंकार अवार्ड दिया है 3 मार्च में।
0: हाँ हाँ, अच्छा, आपको सम्मानित किया गया है योग के लिए।
1: रखा हुआ मेरे पास।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आप आगे भी ऐसे ही सम्मानित होते रहें, और अपना जो काम है आप योग की शिक्षा देना वो भी करते रहें। और
1: तो मेरा जब तक जीवन है हम करते
0: जी रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शारीरिक और मानसिक तौर पर भी आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो समय की कमी है गुरुजी, तो हम आप विदा लेना चाहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बुजुर्ग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर प्रेरित होंगे और योग की तरफ अपना ध्यान देंगे, योग करेंगे और मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे अपने का ये अंक आज यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं मर्डर टू इस फिल्म से। आवाजें थी मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सलीम भट्ट की। शब्द रचना की थी सईद कादरी ने और इसकी धुन बनाई थी मिथुन ने। सुनते हैं ये अगला गाना।

की हुंदा प्यार। जबरिया जुड़ी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं। आवाजें नेहा कक्कड़ और विशाल मिश्रा की थी। लिखा था इस गाने को राज शेखर ने और संगीत था विशाल मिश्रा का।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ। संगीत था अमित त्रिवेदी का और फिल्म थी केदारनाथ।

मेरी प्यारी बिंदु, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं परिणीति चोपड़ा की आवाज में। बोल थे कौसर मुनीर के और संगीत था सचिन जिगर का।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दिल तो पागल है। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की थी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत था उत्तम सिंह का।

चाइना गेट। इस फिल्म का ये गाना था श्रोताओं, अलका याग्निक, शंकर महादेवन और विनोद राठौर की आवाजें थी, बोलते समीर के, और म्यूजिक था अन्नू मलिक का।

0: मोहब्बत, इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाजों में। बोलते समीर के और म्यूजिक था नदीम श्रवण का। और श्रोताओं इसके साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और

0: उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
2: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
6: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा

0: बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए

0: आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछें अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
1: दो बार दिया जाता
0: है। जी जी, आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
0: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या

0: स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
1: कंपनी के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग। तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
0: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
1: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
0: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है,
0: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
0: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
1: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
0: हाँ,
1: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
0: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी।
4: बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी।
0: हिमांशु जी,

0: आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
1: मैडम कर दिया माना।
0: जी जी
1: कर दिया, कर दिया।
0: सवाल पूछे
1: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
0: जी,
1: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
0: जी पुनेंद्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से तो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
0: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
0: जी जी,
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
0: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉय से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
0: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे मालूम चलेगा कि उनका PF जो कटता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
2: अमित जी, अमित जी नमस्कार, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके EPFO के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसके थ्रू OTP से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो UAN से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहां जहां से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफर करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
0: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको EPF खाते UAN नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
2: अभी
4: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहां पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका UAN जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना UAN जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका EPFO का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
0: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी।

0: आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है, और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का GST नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो, वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
0: और तो कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
0: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉयी अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयी को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयी के अगेंस्ट है, एम्प्लॉयी है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी पा सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
3: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं

0: मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी यह बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहां पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन-विन है, जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
2: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे
1: जी मोहन जी,
2: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर।
1: जनरलाइज सवाल पूछाना
0: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से।
3: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
3: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
4: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्रफान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे,
4: भारत रोजगार रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से
0: इसमें सेक्टर? इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी

0: बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
2: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
3: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
3: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: نعم.
1: आकाशवाणी दिल्ली का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिल अपना और प्रीत पराई, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ लता मंगेशकर की थी। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

नई रोशनी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और इस गाने को संगीतबद्ध किया था रवि ने। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं।

सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां। निकाह फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। आवाज सलमा आगा की थी, बोल थे हसन कमाल के और संगीत रवि का।

दिन ढल जाए हाय रात न जाए। गाइड फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार थे SD वर्मन।

महेंद्र कपूर के स्वर में गुमराह फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे श्रोताओं। शब्दकार थे साहिर लुधियानवी, तर्ज बनाई थी रवि ने। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

फिल्म संगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात्रि के ठीक 10:30 हो रहे हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए वायलिन वादन। राग है श्याम कल्याण। कलाकार हैं पंडित वीजी जोग। तो आइए सुनते हैं राग श्याम कल्याण में पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राग श्याम कल्याण में पंडित वी जी जोग का वायलिन वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री

0: लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhau Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including Baguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khurda Road Balangir, Nopada Gunapur, Lanjigarh Road.